और बीजेपी का मतलब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन वो स्टूडेंट आंदोलन के बाद ये क्या हो गया ना, इसका मास बेस में बहुत

0: आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया, और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का सूखड़ा साफ होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है। भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी।
1: Now, for the seventh day in a row, Ranchi has been witnessing an unprecedented agitation by students. Hundreds of job aspirants are on the streets alleging serious irregularities in the JPSC and the JSSC and other recruitment examinations. It's the chief minister of the state, the Hemant Soren government, that has ordered a CID probe into the matter, but the protesters are pressing for a CBI investigation. The cancellation of the 14th JPSC preliminary examination and a fresh test with no breakthrough in sight. Student leader Devendra Nath has now begun an indefinite hunger strike. Support, however, has largely remained symbolic, with the BJP has accused the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Jantar Mantar in the national capital are missing from the streets of Ranchi, raising questions against Rahul Gandhi as to what happened to his activism at this point in time.
2: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप, सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं
3: जी।
2: ईमान से मेरे भैया
3: हम
2: ने
3: पूरी तरह,
2: कह
3: जितने
2: दिया
3: भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे
2: जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।
4: आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंश से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
5: बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई, तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना, और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी ही चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है। तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
6: लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज़ को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए। कल सीजेपी के लीडर से बात भी हुई थी, जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखें, और आप लोगों की मांग जायज़ है तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।
7: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और इनका ये आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है, और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय

0: जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
1: अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका का वो वीडियो कॉल अब सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ, तो अब आप संतुष्ट हैं? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
2: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है, और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। आज 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएससी, सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा, और जहां तक कोई हावी होना चाहता है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
1: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है?
3: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का त्रिपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इससे कोई कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
2: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए, कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
4: And with that, we're slipping into a very short break. Back with what's happening with Donald Trump putting out an ultimatum to Iran. That and a lot more. Stay with us.
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
6: This location from Tel Aviv
5: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
7: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
8: The Ayatollah Khamenei is gone.
9: There has been a missile attack right behind you,
10: and we need to rush into a shelter.
11: Heading there.
12: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
5: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
13: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect. I dig. Until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
14: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
15: Really?
14: Fashion.
4: Welcome back. Let's get you the latest. And it is the last chance for Iran to strike a deal, is what Donald Trump is saying. Iran talks are underway at the request of Tehran. Iran must accept the actions that are being, the demands that are being made. And Trump is saying that the reopening of Hormuz is the first phase, and that is non-negotiable. And Trump has also said that a nuclear deal is

0: Prashant Kishore defeated his nearest rival, BJP's Neeraj Kumar, by a margin of over 19,000 votes, 19,324 to be precise, conceding the mandate. The BJP president and the former five-time MLA from Bankipur, Nitin Naveen, said that his party will earnestly introspect the results. Meanwhile, it is Prashant Kishore's win that has sent ripples across the Bihar electorate, with Jan Swaraj emerging as a serious alternative to RJD with a new voter base and marking the first defeat for the BJP since Samrat Chaudhary became the chief minister.
1: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है. पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो. तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए.
2: आरजेडी की सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं. मैडम, बांकीपुर का संदेश क्या है आपके लिए, जो रुझान है और जो अब नतीजे में बदलने वाले?
3: देखिए, मतलब मेरा तो कोई बांकीपुर जो बांकीपुर के जनता का संदेश मुझे यही लग रहा है जिस हिसाब से जो वोटिंग उन लोगों ने जितना भी किया है, परसेंटेज बहुत कम रहा इस बार. और शाम किशोर को शायद लीड अभी चल रहा है, जैसा टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग को मिल रहा है. लगता है जनता लोकतंत्र है और जनता मालिक है, जनता कब किसको जिताएगी, कब किसको हराएगी, ये कहना.
2: कारण कैसे देखते हैं, तीन चार दशकों से बीजेपी का गढ़, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और इसके बावजूद बीजेपी की हार, इसके पीछे क्या कारण आपको सीधा नजर आता है?
3: देखिए, कारण बहुत है लेकिन बहुत जल्दी होगा अभी कारणों को जनता के सामने लाना या टीवी चैनल्स पे इसको बोलना, क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है. तो एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए.
4: भाजपा बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी खबर है. और केवल बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है. सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो या नीट छात्रों पर गोली चलाने का सवाल हो या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी. और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है. यह जो नाराजगी थी यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का.
5: बांकीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस एरिया बिहार से अलग इलाका से भिन्न है, विभिन्न है, क्योंकि उधर बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और हॉस्टल्स है. और बीजेपी का मतलब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन वो स्टूडेंट आंदोलन के बाद ये क्या हो गया ना, इसका मास बेस में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया. ये आई ओपनर है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जीत है.
6: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे और वो चेहरा के रूप में पीके आ गए, तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया.
7: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे. अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियाँ हैं जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर अशुभ गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है. जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है. भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी.
0: Now, for the seventh day in a row, Ranchi has been witnessing an unprecedented agitation by students. Hundreds of job aspirants are on the streets alleging serious irregularities in the JPSC and the JSSC and other recruitment examinations. Is the Chief Minister of the state?

0: the Hemant Soren government that has ordered a CID probe into the matter, but the protesters are pressing for a CBI investigation. The cancellation of the 14th GPSC preliminary examination and a fresh test with no breakthrough in sight. Student leader Devendra Nath has now begun an indefinite hunger strike. Support, however, has largely remained symbolic, with the BJP has accused the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Jantar Mantar in the national capital are missing from the streets of Ranchi, raising questions against Rahul Gandhi as to what happened to his activism at this point in time.
1: क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप, सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
2: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंश से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसीलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
4: बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई, तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना, और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी ही चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
5: लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज़ को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए। कल सीजेपी के लीडर से बात भी हुई थी, जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखें, और आप लोगों की मांग जायज़ है तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।
6: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और इनका ये आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है, और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
0: अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका का वो वीडियो कॉल अब सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ, तो अब आप संतुष्ट हैं, आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे, किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
7: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है, और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है, आज 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपने अधिकार के लिए, तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग, और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जेएससी सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले, तो मेन एजेंडा। और जहां तक कोई हावी होना चाहता है ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
0: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है।
8: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम कोई हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का तिरपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इससे कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
7: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
0: And with that, we're slipping into a very short break. Back with what's happening with Donald Trump putting out an ultimatum to Iran. That and a lot more. Stay with us.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watching Prime 5. I'm Harisha Sehgal.
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
11: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
12: So many attacks.
11: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
12: It's incredible.
11: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
12: Welcome to Left, Right and Center.
11: Hard facts.
12: War struck country.
11: Hard questions.
12: In the Ukraine.
11: 30 years of trust.
13: In the Kargil area.
12: North Ukraine. In France. In Italy.
13: At Srinagar.
12: I am Mr.
13: Vishnu Shom for NDTV.
11: Vishnu Shom. Only on NDTV. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
14: This location from Tel Aviv
11: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
15: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
16: The Ayatollah Khamenei is gone.
17: There has been a missile attack right behind.
0: Welcome back. Let's get you the latest. And it is the last chance for Iran to strike a deal, is what Donald Trump is saying. Iran talks are underway at the request of Tehran. Iran must accept, the actions that are being, the demands that are being made. And Trump is saying that the reopening of Hormuz is the first phase, and that is non-negotiable. And Trump has also said that a nuclear deal is to follow after the opening of the strait. He's gone on to say that Saudi Arabia, UAE and Qatar are pushing for talks between the two nations and warning of escalation if the talks fail. So deal or total surrender, these are the two options that Trump has put out in front of Iran's leadership. As far as that ultimatum that's come in a lengthy rant on social media platform claiming that the country had begged for talks before publicly denying that any discussions were even taking place. Listen in.
18: Now, it's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny it. But they're not denying it now. They just put out a statement, not denying it. But for some reason, they, when they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, wait, we're in talks. Big deal, we're in talks. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II, that's pretty big.
0: Pradeep, my colleague with us. Pradeep, deal or total surrender is an ultimatum by Trump, who keeps walking back, keeps flip-flopping or blinking.
19: Yeah, Divya, a very strong warning coming from the U.S. President Donald Trump. He said in the past also he gave Iran a chance for the negotiation, but every time the things were back to square one. So this was the last chance for the Iran that they should come out with a good document. When he says the good document, he means one, the Strait of Hormuz to be open, and they want that some positive development so far as denuclearization is concerned. That's what actually he is hinting at. He said that's why he decided to halt his big operation. The operation would have been bigger than what actually had happened during the Second World War. He said that if this deal fails and they don't succeed in negotiation, then he's going to hit them hard. That's what actually the Donald Trump has said. He said it was basically because of the insistence of three Gulf countries, and also the Iran had been insisting for the negotiation, that he decided to halt his operation. Now it is a chance given to them. Let's see how the things will proceed from here. But this is the last chance they had given to Iran.
0: Right, Pradeep, thank you so much for getting us those details. So Iran threatening U.S. warships in the Strait of Hormuz, that is a reaction that's coming about as far as Iran is concerned. Breaking news coming in with Iran there. They are saying that U.S. warships will be targeted, and Iran has rejected any new shipping corridor as far as the Strait is concerned, and promising to block and force, as far as the route changes are concerned. That is Iran there linking talks to change as far as U.S. behavior is concerned and setting conditions for further engagement. We have Pradeep back with us. Pradeep, take us through, how Iran is reacting. Iran on their side has firstly denied that the talks are even on.
19: See, that Iran has been doing from day one. Whenever the United States President Donald Trump has said that there has been a negotiation with them, every time we have seen that their denial has come from the Iranian side. And every time the conditions remain the same. And this time also Iran is saying that U.S. will have to change its behavior. And when they say the U.S. will have to change its behavior, the first condition is that they will have to lift the naval blockade that has been there, because of which the Iran is suffering economically. And second, they want there should be no hostilities or aggression from the U.S. side. They are saying that some change they have seen, but they haven't seen total change, so they are looking for change in behavior. And the third thing, what is important, is that they do not want the southern corridor to be opened in Strait of Hormuz, because they feel that if that southern corridor is opened, that way they will be reducing their leverage in the Strait of Hormuz. So they are against the opening of that. They said even if the naval ships are used by the U.S. for doing so, or the warships are used, even then they will not allow the warships will be targeted by Iran. That's what they had been insisting. Let's see how things are really going to unfold. That has irked even United States President Donald Trump. He said, when we are talking, we are talking. But the problem with Iran is that whenever they are talking, they come out with a statement and they keep on denying. I fail to understand why they do so.
0: Let's just listen into what the Iranian side has to say.
20: رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم
21: در تنگه هرمز
20: کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم. مسئله مهمی که الان برای رهبر معظم انقلاب مطرح اینه که آمریکایی‌ها رفتارشون رو عوض کنن. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیز جدیدی رو در رفتار آمریکا ببینیم. به محض اینکه اینا این شروط رو عمل بکنن، یعنی این 5 تا شرطی که قرار بود موانع مقدمه و یه 4-5 روزی هم شروع کرده بودن این رو عمل کنن، ما اینو دال بر تغییر رفتار میدونیم. ما این ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم؟ حتما برای ناوهای آمریکا، برای پایگاه آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد اومد. یعنی ما دست بزنیم دست هم دیگه آمریکا به محاصره دریایی ادامه بده.
0: And we have more breaking news coming in, and this is in regard to now, in fact, Iran and Oman over the Strait of Hormuz and those final conversations that are taking place. This is the final stages with Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi there, quoting, saying that it is, going to be, of course, the Iran-Oman talks that are focusing on a safe route through the Strait of Hormuz. And this is Iran links the Strait of Hormuz situation to the military action by the United States and says there's no change as far as the Strait is concerned amid the U.S. naval presence. The U.S. issues to be taken up in later talks is what Iran had to say. So Iran and Oman there on talks on that temporary route as far as the Strait of Hormuz is concerned, and that seems to be in its final stages.
1: مادامی که شرارت آمریکا

0: Let's begin with our top story, and that's former poll strategist and Jan Swaraj Party chief Prashant Kishore, who has become the newest MLA of the Bihar Assembly after breaking BJP's 30-year winning streak in Bankipur by poll elections, a seat vacated by BJP President Nitin Naveen. Prashant Kishore defeated his nearest rival, that's BJP's Neeraj Kumar, by a margin of over 19,000 votes, 19,324 to be precise. Conceding the mandate, the BJP President and former five-time MLA from Bankipur, Nitin Naveen said that his party will earnestly introspect the results. Meanwhile, it was Prashant Kishore's win that has sent ripples across the Bihar electorate, and we have the Jan Swaraj emerging as a serious alternative when it comes to Bihar against the RJD with a new voter base and marking the first defeat for the BJP since Samrat Chaudhary became the chief minister.
1: बिल्कुल बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है. पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो. तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए.
2: आरजेडी की सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं. मैडम, बांकीपुर का संदेश क्या है आपके लिए, जो रुझान है और जो अब नतीजे में बदलने वाले?
3: देखिए, मतलब मेरा तो कोई बांकीपुर जो बांकीपुर के जनता का संदेश मुझे यही लग रहा है, जिस हिसाब से जो वोटिंग उन लोगों ने जितना भी किया है, परसेंटेज बहुत कम रहा इस बार, और प्रशांत किशोर को शायद लीड अभी चल रहा है जैसा टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग को मिल रहा है. मुझे लगता है जनता लोकतंत्र है और जनता मालिक है, जनता कब किसको जिताएगी, कब किसको हराएगी, ये कहना.
2: कारण कैसे देखते हैं, 3-4 दशकों से बीजेपी का गढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और इसके बावजूद बीजेपी की हार, इसके पीछे क्या कारण आपको सीधा नजर आता है?
3: देखिए, कारण बहुत है, लेकिन बहुत जल्दी होगा अभी कारणों को जनता के सामने लाना या टीवी चैनल्स पे इसको बोलना, क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है, तो एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए.
4: भाजपा बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी खबर है, और केवल बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है. सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो, या नीट छात्रों पर गोली चलाने का सवाल हो, या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी, और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है. यह जो नाराजगी थी, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का.
5: बांकीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस एरिया बिहार से अलग इलाका से भिन्न है, विभिन्न है, क्योंकि उधर बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और हॉस्टल्स है, और बीजेपी का मतलब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन वो स्टूडेंट आंदोलन के बाद ये क्या हो गया ना, इसका मास बेस में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया. ये आई ओपनर है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जीत है.
1: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे और वो चेहरा के रूप में पीके आ गए, तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया.
6: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे हैं. अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया, और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही सर्वनाश तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर अशुभ गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का सुखड़ा साफ होने जा रहा है. जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है. भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जमानतें जब्त होंगी.
0: Prabhakar, my colleague, joining us to get us more details. Prabhakar, with this new opposition force emerging in the state of Bihar, would you say it's more damaging for the RJD or is it more damaging for the BJP?
7: I see it damaging for both the camps, rather. Damaging for BJP for very obvious reasons that they have lost the seat of the national president, Nitin Naveen, and also Samrat Chaudhary. He has just completed 100 days as a chief minister in Bihar. And this was the first election which was actually being fought under his leadership. So it has been a big, big political setback for both Samrat Chaudhary and Nitin Naveen. But more importantly, a big, big challenge for Tejaswi Yadav, because he was the leader of opposition there in Bihar and he is the guy who was supposed to be raising the issue concerning people, raise issues to corner government on various topics. Now, Prashant Kishore would be there in the Bihar State Assembly, and when Prashant Kishore enters, he is known as a man who talks with data, who talks with logic. So very soon you will be seeing actually Prashant Kishore taking that stage which Tejaswi Yadav has been occupying. Though technically he will still remain the leader of opposition because of the numbers of RJD. But Prashant Kishore is the man who would actually be in the role of the leader of opposition by speaking out in the state assembly, by raising various issues which concerns people.
0: Very latest. So we're talking about, moving on with the two bipoll defeats, two very states, but one uncomfortable question when it comes to the BJP. Has the party's court begun to show signs of fatigue? While the BJP has downplayed the losses in Bankipur and Madhya Pradesh's Datia, the results have triggered an internal review on everything from candidate selection to organizational strength. Here's a report on why these bipolls are being seen as an early warning sign rather than just isolated setbacks.

0: Mishra publicly expressed his displeasure and his supporters protested.
1: 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में।

0: lease action have upset sections of its core support base. However, the biggest lesson may be organizational. The BJP has already said it will conduct a booth-wise review of the Bankipur result. The BJP will have to examine who stayed away, who shifted, why did the core vote weaken? And finally, did local leadership fail to energize voters? Two bipoles do not amount to a national trend. But for the BJP, they are an opportunity to course correct. Bureau Report, NDTV.
1: In other news, the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology sharply questioned Meta over the brief removal of Prime Minister Modi's Facebook video, with committee chairman Nishikant Dubey telling the company that an apology alone was insufficient and calling for greater accountability. During a nearly three-hour meeting attended by representatives of Meta, Google, YouTube, as well as Platform X and Snapchat, MPs also raised wider concerns over content moderation, algorithmic, as well as transparency and foreign influence on digital platforms and compliance with Indian laws. Members reportedly sought a personal apology from Mark Zuckerberg, the CEO of Meta, discussing the company's content control as far as the mechanisms are concerned, and warning that they needed safe harbor protections that could come under scrutiny if such lapses were to reoccur. Now, Meta expressed regret as far as that incident is concerned, describing the removal as an error on their part. Listen in to what Nishikant Dubey had to say.
2: Meta India ne Pradhan Mantri ji ke jo content ko hataya. Ye Meta India pahli baar aisa kaam nahi kar raha. Unka jo mindset hai, wo desh ko destabilize karne ka hai. Aur jab Bharat ke Pradhan Mantri ka jo hai video utara ja sakta hai. और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा। तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने दो चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
1: Switching tracks to Ranchi now, that in the state of Jharkhand, it's Ranchi that has been witnessing an unprecedented agitation when it comes to students. Hundreds of job aspirants have taken to the streets alleging serious irregularities in JPSC and JSSC and other recruitment examinations. It's the chief minister and the government of Hemant Soren that has ordered now a CID probe, but the protests are basically demanding a CBI investigation into the matter. As far as the cancellation of the 14th exam is concerned of JPSC and a fresh test with no breakthrough in sight. And we have student leader Devendra Nath there, who has begun an indefinite hunger strike. And now, however, there is a largely, when we talk about the support, that somehow remains only symbolic. The BJP has accused the Congress of being selective as far as activism is concerned, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students here in Delhi, in Jantar Mantar, seem to be missing from the streets of Ranchi. Why is Rahul Gandhi quiet on the matter? Why isn't he speaking up, is the question.
3: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की, उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
4: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
3: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
5: आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं।

0: सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई। तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारी यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है। तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
2: लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज़ को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए। कल सीजेपी के लीडर से बात भी हुई थी जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई। तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखे हैं और आप लोगों की मांग जायज़ है, तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।
3: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इनका ये आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
4: पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीजों को दिखाइए। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं।
5: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं, एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यही डिमांड है सीबीआई जांच। क्यों? बिना सीबीआई जांच के हम मानेंगे नहीं।
6: द रिसेंट डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन झारखंड, द प्रोटेस्ट बाय द एस्पिरेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शोज द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वांट्स टू टेक पॉलिटिकल पॉइंट्स बाय सपोर्टिंग द सीजेपी प्रोटेस्ट इन दिल्ली एंड is maintaining a conspicuous silence over the protest by the aspirants in the Jharkhand Public Service Commission irregularities affected students.
1: अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका का वो वीडियो कॉल अब सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ, तो अब आप संतुष्ट हैं? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
7: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। आज 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएससी, सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा और जहां तक कोई हावी होना चाहता है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का

0: तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
3: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
4: So many attacks.
3: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right and Center.
3: Hard facts.
4: War-struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine.
6: In France. In Italy.
4: At Srinagar.
6: I am Iskandar.
4: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
3: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स
8: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव
3: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
9: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind you.
12: And we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
7: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: Welcome back. Now, India's Commonwealth Games campaign in Scotland ended with a rich haul of medals. And today, the champions, of course, we had the champions come back home yesterday to a rousing welcome from boxing to para-athletics and judo. The athletes who flew the tricolour high are now looking ahead to even bigger challenges. NDTV's Vimal Mohan caught up exclusively with the medal winners as they arrived in India. Here's what they had to say about their performances and the emotions of standing on the podium.
1: लोग आए हो थके हुए भी हो क्या सेलिब्रेट किया और क्या अगला टारगेट है
2: सेलिब्रेशन तो ये था सर कि पूरी टीम हमारे साथ है और वहां पर भी काफी इंडियंस थे उन लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया
1: क्या खिलाया
2: खिलाया इंडियन खाना खिलाया बस मिठाई की कमी रह रही है अभी
1: और आपका रील हमने देखा बहुत अच्छा आपने वहां पे जीतने के बाद आपने बनाया
2: जी जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल लेके जीते हैं तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और अभी ग्रैंड वेलकम अभी हमारा बाहर होना है वेट कर रहे हैं
1: जस्टिन फ्लैग बियरर बनना कितना बड़ा अचीवमेंट
2: काफी मतलब मेरे को प्राउड फील हुआ सर कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था उसने मेरे को ये जिम्मेदारी दी
1: आपके डैड से बात करे तो उनको पता नहीं था शाम तक
2: अच्छा अच्छा जी जी सर काफी अच्छा
1: था सर वो कैसा रहा आपके लिए ओवरऑल सफर कभी सोचा था कि इंडियन टीम

0: 10 में 10 फाइनल पहुंचेंगे।
1: बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरी इंडियन बॉक्सिंग टीम ने, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए, और हम आगे भी इसको ऐसे ही मेंटेन करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: प्रिया, आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से हम 12वें नंबर से 4वें नंबर पे पहुंचे हैं। तो कैंप में आप लोगों का अलग रुतबा था?
2: हाँ जी बिल्कुल, कोचेज ने बहुत सपोर्ट किया, कैंप में बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती थी जिसकी वजह से आज भारत चौथे स्थान पर आया।
0: और आपका तो अलग जलवा बना?
3: बस बहुत अच्छा लग रहा है और आगे अभी तो एशियन गेम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं।
0: सचिन, आपको सब आपके मेडल के बारे में सबसे ज्यादा श्योर बोला जा रहा था, हालांकि किसी को उम्मीद नहीं होगी, हालांकि मैं पूछूंगा सर से, कोई नहीं बोल सकता था कि 10 में 7 मेडल मिलेंगे, लेकिन आपके गोल्ड के लोग सबसे ज्यादा श्योर थे वो?
4: श्योर तो थे ही, क्योंकि हम सभी ने स्टार्टिंग से ही काफी अच्छी ट्रेनिंग की हुई थी, काफी सपोर्ट मिल रहा था सारी हर जगह से।
0: एक नरेंद्र से पूछता फिर यार, मुझे कभी नहीं लगा आप सुपर हैवी वेट में हवा सिंह होते थे, फिर अब आपका कितनी बड़ी बात है, उससे लोग अब मेडल के साथ
5: तैयारी करने गए थे और पहले से ये कर गए थे, लास्ट टाइम से बेस्ट प्रोग्रेस जड़ी है और BFI ने और साई ने जो साथ मिलकर काम किया था, पहले बेलफास्ट में कैंप लगाया था, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला था और ट्रेनिंग के बाद फिर हमने जो वहाँ करके दिखाया आपने सबने देख लिया, अभी नेक्स्ट टारगेट एशियन गेम है।
0: अजय सर, मैंने आपको बहुत साल से फॉलो किया, लेकिन मैंने आपको इतना खुश, शायद रिजल्ट और भी बड़े हैं, लेकिन ये मतलब 96 साल में दुनिया की कोई टीम नहीं कर सकी।
6: देखिए, ऐतिहासिक बात है कि किसी भी देश ने 96 साल की हिस्ट्री में 7 गोल्ड बॉक्सिंग में किसी भी देश को नहीं मिले,
0: और कोई 10 फाइनल में नहीं पहुंचा,
6: और कोई 10 फाइनल में नहीं पहुंचा।
0: और मुझे आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली कि एक दिन में 7 बार राष्ट्रीय गान बजा।
6: हाँ, बहुत देखिए कैसा माहौल बना, बच्चों के लिए भी, क्राउड के लिए भी, और किसी आप विदेश में जाएं और वहां पर आपका बार बार झंडा लहराए और बार बार राष्ट्रगान बजे, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और जितने भी वहां पर एक्सपैट्रिएट इंडियन थे, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने भी कहा कि जी ऐसा दिन हमने हमारी जिंदगी में कभी, ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है आज।
0: ये अच्छा दिन है और कंटिन्यू रहे, एशियन गेम्स में भी, LA में भी रहे, और आप ऐसे ही खुश रहिए, इन लोगों को और बहुत खुश रखिए।
6: थैंक यू सो मच।
0: हमारे साथ लवलीना बोरगोहेन है और ओलंपिक चैंपियन, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, और पहला कॉमनवेल्थ मेडल आया, और प्रमोद सर हैं, जनरल सेक्रेटरी सर। सबसे पहले लवलीना, आपके लिए पहला मेडल है, पहले ये शुरू हो गया था, कितना बड़ा संतोष है आपको?
7: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल है मेरा। लास्ट 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल नहीं था, तो ये मेडल मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुत मतलब बड़ी बात है कि मैं इस बार मेडल ले पाई। और हाँ, थोड़ा एक अफसोस है कि मैं गोल्ड नहीं ले पाई, बट मैं सिल्वर में भी बहुत ज्यादा।
0: नहीं, आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको 2018 यूथ में भी देखा है गुवाहाटी में, और उसके बाद लगातार आप सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बॉक्सर हैं। तो ओलंपिक्स एक और आ रहा है आगे, वो माइंड में है?
7: जरूर, 28 का ओलंपिक ही मेन टारगेट है, उससे पहले एशियन गेम्स भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हर एक कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओलंपिक तो है ही, वो तो मतलब अल्टीमेट गोल है, बट उससे पहले अभी एशियन गेम्स है, उसके लिए ज्यादा।
0: सर प्रमोद सर, क्या वजह है, ये 2 वजह बताइए जिसकी वजह से ये टर्न अराउंड हुआ, आप बोल तो रहे थे लेकिन मुझे भरोसा नहीं।
8: नहीं देखो, एक तो हमारा ट्रायल होना, असेसमेंट से ट्रायल में आना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, अगर ट्रायल नहीं होते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस नहीं आती। दूसरा, मैं लवलीना के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारा ओलंपिक में फिर से मेडल रिपीट करेंगे, परफॉर्मेंस जो है इनकी इम्प्रूव होती जा रही है, जिस कंडीशन से आई है बहुत अच्छी कंडीशन,
0: रीच
8: इनका सिल्वर भी गोल्ड के बराबर है।
0: तो ये रोहित तो नहीं?
7: नहीं है, बट हाँ, मेडल जीतने के बाद ही सेलिब्रेशन तो होता ही है कि
0: वो क्या किया, डांस किया, रील बनाया, क्या किया?
7: नहीं, ऐसे सेलिब्रेशन नहीं किया, स्वीट वगैरह हाँ थोड़ा सा तो खाया ही है, थोड़ा वेट कंट्रोल।
0: कौन सी मिठाई पसंद है ज्यादा?
7: मिठाई मुझे ब्राउनीज पसंद है।
0: क्या बात। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग कीप डूइंग वेल।
7: थैंक यू भाई।
0: हमारे साथ 6 पैरा चैंपियन है, और सबसे बड़ी बात है इन सब ने पोडियम पर एक साथ जगह बनाई, 2-2 के पेयर में इन्होंने जगह बनाई है। आप सुमन और आप शुभम, ये सोल्जर्स हैं, इनका माइंस में पाओ गया था कुछ में, ये सारी कहानी हम बता रहे हैं, NDTV को भी बता रहे हैं। ये बताया, अभी सेलिब्रेट क्या किया आपने और आगे क्या टारगेट है?
9: अभी आगे का टारगेट है अभी एशियन गेम्स, हाँ। और मेन टारगेट है ओलंपिक, हाँ। अभी जैसे अभी मेडल है, मेडल है ओलंपिक, उसमें एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी मेडल देश के लिए मेडल।

0: दिखाना है।
1: अच्छा, पैरा ने जो बदला, पैरा और बॉक्सिंग ने खासकर, उसकी वजह से हम चौथे नंबर पे आए, तो आप लोगों का जो रुतबा है कैंप में बढ़ा?
2: जी सर बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में इतने सारे मेडल्स एक साथ आए तो वही है कि हम थोड़ा पीछे चल रहे थे पहले मेडल टैली में, बट वही है कि जैसे ही हमारे मेडल्स एक साथ इतने सारे आए तो फिर इंडिया सीधा फोर्थ नंबर पे पहुंचा, तो बहुत खुशी।
1: तो ये सोमन है और ये शुभम है, ये गोल्ड और सिल्वर एक साथ लाए, और दिलीप है और बासिल, ये इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज एक साथ, गोल्ड और सिल्वर एक साथ है। तो ये आप लोगों के लिए मतलब आपस में कॉम्पिटिशन होता था, राइवलरी होती थी, और आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे थे।
3: हाँ, मैं 400 करता हूँ।
1: हाँ, पर उधर पहली बार इंटरनेशनल बड़ा था 100 मीटर।
3: हाँ, पहली बार मैं 100 मीटर किया तो उधर भागते हो तो मुझे अच्छा लगा, और मेडल गोल्ड मेडल लाया और मैंने गेम रिकॉर्ड किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: आपका कंपटीशन था इनसे? आज ये सत्य सर, आपका कंपटीशन था? आई मीन यू वर कम्पीटिंग विद हिम?
4: या
1: यू वर सर, फैंटास्टिक रिजल्ट।
4: See, this is all on the teamwork. Yeah. Paralympic Committee of India, Sports Authority of India, again on the government, your corporate, all together your work. हम लोग साथ काम करने के लिए ये रिजल्ट है।
1: ये सोचा था नहीं होगा सर?
4: नहीं, 100% मैं सोचा था।
1: मैंने आपने बताया था
4: 6-7 मेडल आएगा।
1: आपको उम्मीद थी इतनी?
5: 100% हमें उम्मीद थी। और मैं तो एक बात कहूँ कि शर्मिला ने जो परफॉर्मेंस दी,
1: अरे शर्मिला की तो अलग कहानी में,
5: लाजवाब, आपकी एक अलग स्टोरी है जिंदगी में,
1: कमाल की बात। शिल्पा, हाउ प्राउड आर यू फीलिंग?
6: यस, आई एम सो हैप्पी नाउ।
1: हैप्पी? डिड यू ईट समथिंग स्वीट और समथिंग लाइक दैट?
6: हां यस सर।
1: सर, शर्मिला की तो जानदार कहानी है, मतलब ये मैदान पे आ गई, 5-6 साल पहले आई, एक्स हस्बैंड ने बाहर निकाला, वो सब चीज को छोड़ के, मतलब इनके चेहरे की स्माइल कमाल है। आप अपने बारे में जो भी बताओ, मतलब कमाल है ये।
6: गोल्ड मेडल लेके बोलते
1: तो अब तो अगली बार आपकी दोनों बेटी और आप भी रहेंगी
6: नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में, 3 गोल्ड मेडल,
1: तीनों माँ बेटियाँ। और कुछ क्या सेलिब्रेट किया, क्या करना है अभी, घर जाके क्या बनाना है, क्या बेटियाँ बनाएंगी, आप बनाएंगी कुछ खाना?
6: मेरी माँ बनाओगी चूरमा।
1: चूरमा और?
6: चूरमा और खीर।
7: बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय।
1: जूडो की टीम है और चैंपियन है ये, सबसे पहले एनडीटीवी पर आ रही है। अस्मिता, ये जादू जूडो का ने कैसे किया?
8: बहुत अच्छा किया है सर।
1: मिठाई खाया आपने? मिठाई बोला था
8: आप? पेस्ट्री खाई थी वो? आप
1: पेस्ट्री खाई? सर कैसे हुआ ये जादू, मतलब हम लोग तो कभी सोचते
9: नहीं। लोगों ने बहुत मेहनत की हुई थी, जादू नहीं हुआ है, इनकी मेहनत का फल है ये।
1: हर्ष, आपने तो फाइनल 10-0 से जीता है।
10: हाँ जी, वो स्कोर मतलब वजारी स्कोर होता है, वो वजारी स्कोर के साथ मैंने अपने फाइनल पार्ट फिनिश करे थे।
1: कभी अच्छा सच बताइए, आप लोगों ने कोई सोचा था कि गोल्ड आएगा 36 साल में? तो पहले किसने सोचा था गोल्ड?
8: जी सर, मैं तो सोच के आई थी कि मुझे गोल्ड लेना है।
1: तो अब आगे क्या टारगेट है?
8: आगे सर एशियन गेम्स है और बाकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह।
10: हाँ जी, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप टारगेट है नेक्स्ट हमारा।
9: अगला ओलंपिक की भी तैयारी शुरू कर रही है।
1: आपको योगी जी ने फॉलो किया है, ट्वीट किया है?
8: जी जी,
1: शिव स्तुति भी आपका आती है ना?
8: जी सर,
1: कुछ बोलिए, मैसेज दीजिए लोगों
8: को। उन सबके बहुत बहुत थैंक यू, और योगी जी को भी बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने मुझे जॉब दिया है यूपी पुलिस में।
1: ये गेम अब पॉपुलर हो जाएगा इंडिया में?
8: जी सर बिल्कुल होगा।
1: आप लोगों को कभी किसी ने छेड़ा तो नहीं?
8: नहीं नहीं नहीं नहीं
1: सर। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट सर।
11: And with that, we are slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Don't go anywhere.

0: क्लास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
3: So many attacks.
2: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
3: War-struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine. In France. In Italy.
5: At Srinagar.
3: I am Mr. France.
6: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
2: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स
8: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव
2: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स
9: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind you.
12: And we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
2: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
7: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
15: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind

0: It's 8 a.m. You are watching The Breakfast Show on NDTV 24/7. I am Parmeshwar Bava. We've got an action-packed bulletin lined up for you this morning. Let's begin with the top headlines. A resounding victory for Jan Swaraj Party leader Prashant Kishore as he challenged the BJP in its fort, Bankipur, winning the seat that's considered its stronghold since 1995. It's a loss that comes on the heels of the Gen Z protests in the national capital. The Cabinet cup triggers fresh fault lines in Karnataka. Senior leaders of the Congress MLAs, they are venting their anger over the Cabinet picks. The Karnataka Chief Minister, meanwhile, is urging dissatisfied leaders to state. The agitation over the alleged paper leak in Jharkhand is intensifying. As the protest enters its seventh day, students continue to demand a CBI probe while political parties trade charges over the controversy. Meta is under the parliamentary scanner over the Prime Minister's Facebook video. The company has apologised before the panel, but lawmakers are demanding greater accountability from the tech giant. US President Donald Trump says talks with Iran are underway, warning that negotiations are Tehran's last chance to secure a deal to end the five-month conflict. Iran denies holding talks with Washington, saying it's speaking to Oman about the Strait of Hormuz. All right, our big focus currently, a brief takedown of the Prime Minister's Facebook video has now snowballed into a larger debate over how powerful digital platforms should be regulated in India. The Parliamentary Standing Committee has pulled up Meta over the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video, with members saying that an apology alone is not enough and demanding greater accountability. In fact, the committee chairman, Nishikant Dubey, has told the company that an apology alone was insufficient and called for greater accountability. You know, during a nearly three-hour meeting attended by representatives of Meta, Google, YouTube, X and Snapchat, the committee also widened the discussion beyond this one incident, raising questions over how social media companies moderate content, how their algorithms work, whether they're transparent enough, and how they comply with the Indian law. As the BJP argued that such incidents raise serious concerns about the functioning of global tech platforms, members reportedly, they sought a personal apology from Meta CEO Mark Zuckerberg. Meta, though, you must note, has expressed regret over this incident, describing the removal as an error. Here are the crucial reactions you need to listen to this morning.
1: Meta India ने प्रधानमंत्री जी के जो content को हटाया, ये Meta India पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही। उनका जो mindset, वो देश को destabilize करने का है। और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है video उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने दो चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
0: All right, let's turn our attention to the latest information we're tracking currently. If your WhatsApp account suddenly stopped working last night, you were not alone, because several users, including many in India, reported that their WhatsApp accounts had been placed under review, temporarily basically locking them out of the app for up to 24 hours. Many have claimed that they had received no prior warning and insisted that they had not violated the platform's terms of service. WhatsApp, you must note, has now acknowledged the issue, saying its systems are constantly working to identify abusive activity, and at times, genuine users may get caught in that process. So the company says that if mistakes were made, they will be corrected as quickly as possible. But Aishwarya Jain is tracking the latest for us. He joins us live at the moment. Aishwarya, break down for us. What exactly are affected users reporting? Are these accounts being suspended? Are they being disabled or simply placed under review? And has WhatsApp indicated whether this was a technical glitch?
2: The WhatsApp spokesperson clearly stated that we are always working to stay ahead of those trying to abuse our services and then ban accounts to keep other users safe. Sometimes we get this wrong, and if we do, we try to fix it as quickly as possible to get people back to chatting. Certainly, that's the response that is coming in. Several users were affected because of disruption that was highlighted around 8 p.m. Yesterday, when users started facing the issue without any prior warning from the Meta Group's messaging app, and it was the WhatsApp screen that displayed a message that account is on hold, it's on review. And certainly, the activity was blocked, the device also being checked as well. But the WhatsApp categorically stated that this is to identify that those who abuse their services have been banned. There were reports by other users to follow to different accounts, and therefore this decision was taken. After reviewing it, the services are back, and several users also posted on the social media stating that without any explanation, their WhatsApp user accounts had been blocked, to which now clarification came in that it was to avoid any such abuse for the users, and it is to safeguard the interest as well of those who are using the WhatsApp services. They try to fix as soon as they got to know. And certainly, it is just to safeguard the interest of the users, something that WhatsApp stated.
0: All right, as always, Aishwarya, thanks so much for joining us with the lowdown. All right, let's turn our attention now to a result that goes well beyond one assembly seat. Prashant Kishore has pulled off what many believed was the toughest electoral upset in Bihar, defeating the BJP in Bankipur, a constituency the party had held continuously since the year 1995. It is Prashant Kishore's first election as a candidate, the BJP's first defeat in the constituency in 3 decades, and the first major electoral setback for the BJP since Samraj Chaudhary took over as Chief Minister. Prashant Kishore defeated his nearest rival, BJP's Neeraj Kumar, by a margin of 19,324 votes in his poll debut. Conceding the mandate, BJP President and former 5-time MLA from Bankipur, Nitin Nabin, said that his party will earnestly introspect the results. You see, for the BJP, this is a loss in the seat vacated by its own national president, Nitin Nabin. For Jansuraj, it's the first real proof that a political movement can convert public outreach into votes. And Prashant Kishore's win has sent ripples across the Bihar electorate, with Jansuraj emerging as a serious alternative to RJD with a new voter base. Before we get in all the details with Prabhakar, listen in to these crucial political reactions.
3: Bankipur ka jo chunav hua hai, वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है. पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे, ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, पलायन बंद हो. तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी के जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए.
4: आरजेडी की सांसद मीता भारती हमारे साथ हैं. मैडम, बांकीपुर का संदेश क्या है आपके लिए, जो रुझान है और जो अब नतीजे में बदलने वाले?
5: देखिए, मतलब मेरा तो कोई बांकीपुर लोग, बांकीपुर के जनता का संदेश मुझे यही लग रहा है, जिस हिसाब से जो वोटिंग उन लोगों ने जितना भी किया है, परसेंटेज बहुत कम रहा इस बार, और शांति सूर को शायद लीड अभी चल रहा है, जैसा टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोग को मिल रहा है. लगता है जनता लोकतंत्र है और जनता मालिक है, जनता कब किसको जिताएगी, कब किसको हराएगी, ये कहना.
4: कारण कैसे देखते हैं, 3-4 दशकों से बीजेपी का गढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और इसके बावजूद बीजेपी की हार, इसके पीछे क्या कारण आपको सीधा नजर आता है?
5: देखिए, कारण बहुत है, लेकिन बहुत जल्दी होगा अभी कारणों को जनता के सामने लाना या टीवी चैनल पे इसको बोलना, क्योंकि अभी काउंटिंग चल ही रहा है, तो एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाए.
6: भाजपा बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी खबर है, और केवल बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है. सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो या नीट छात्रों पर गोली चलाने का सवाल हो या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है। यह जो नाराजगी थी यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का।
7: मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहां कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा, अभी दिखने लगा।
8: बंगीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस एरिया बिहार से अलग इलाका से भिन्न है, विभिन्न है, क्योंकि उधर बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और हॉस्टल्स है और बीजेपी का मतलब ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन उस स्टूडेंट आंदोलन के बाद ये क्या हो गया ना, इसका मास बेस में बहुत ज़्यादा रोशन हो गया, ये आई ओपनर है बीजेपी के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा जीत है।
9: मेरा शुरू से जब कभी आप लोगों ने सवाल किया, मैं बोलता था कि पटना में इस बार बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लोग उबे हुए थे और वो चेहरा के रूप में पीके आ गए, तो पीके के लोगों ने मतदान कर दिया।
10: अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया और जिन जी जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर अशुभ गैस छोड़े गए, पूरे देश से बीजेपी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने जा रही है। भाजपा पूरे देश के अंदर अब हर चुनाव हारेगी, हर जगह इनकी जवान तेज होंगी।
0: ऑल राइट, टू बाईपोल डिफीट्स, टू वेरी डिफरेंट स्टेट्स, बट वन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन फॉर द बीजेपी। Has the party's core vote begun to show signs of fatigue? While the BJP has downplayed the losses in Bihar's Bankipur and Madhya Pradesh's Datia, the results have triggered an internal review on everything from candidate selection to organizational strength. Here's a report on why these bipolls are being seen as an early warning rather than just isolated setbacks.

0: going to give any resignation at any cost. We have seen for the last 2-3 days, multiple programs are being organized by the Congress party at the various districts, and multiple times the supporters of Charanjit Singh Channi camp, they have been demanding resignation of Amrinder Singh Rajavaring. Yesterday when he was delivering speech, he got emotional. He was saying he was being targeted by Aam Aadmi Party, Shromani Akali Dal, as well as the BJP. But now he has seen even some of the Congress leaders, they are also trying to target him. So this is very clear. The infighting is very open within the Congress cadre. And now Amrinder Singh Rajavaring has already made very clear that he is not going to give any resignation at any cost, because he had worked day and night for the party, and the party has already gone down from 88 to 18, and now he has been working for the last 4 years. So at this point of time, he has made up his mind, saying that he is not going to give any resignation. And he got emotional when he was saying that
1: we'll leave it there for now, Gurpreet. We have breaking news updates coming in at the moment. I sincerely apologize, I'm interrupting you. Well, the war of words over Udayanidhi Stalin's remarks has now moved beyond the political arena. Mr. Vijay's TVK has formally approached the National Commission for Women seeking action against Udayanidhi Stalin over remarks made during his latest rally. TVK alleges that Udayanidhi Stalin's comments were objectifying and sexually suggestive, arguing that they lowered the dignity of women in public life, and the party has now asked the commission to take cognizance of this speech, seek an explanation and an apology, and also consider legal action under relevant provisions of the BNS. Vijay Gopal Muridharan is with us at the moment to take us through the latest details. Vijay, what exactly has the TVK submitted to the National Commission for Women?
2: Parameshwar, TVK official spokesperson Paras Selvakumar has written to NCWA, National Commission for Women, and even they had filed a formal complaint through online. In that statement, they had called the Udayanidhi statement remarks made at during Tanjavur rally as offensive and vulgar language targeting a prominent women's figure on a public platform. They had asked for three suggestions to NCW, saying that they should issue notice to Udayanidhi Stalin seeking clarification, and also they should initiate a legal proceedings against Udayanidhi Stalin and should take cognizance of Udayanidhi's speech and by seeing the raw footage of Tanjavur rally. So these are all the demands or suggestions made by the TVK. They have demanded apology also. They have asked NCW to demand apology from Udayanidhi Stalin for targeting a prominent women figure on public platform. So these are all the points made by the TVK. As we speak, TVK also to file police complaint around 10 a.m. this morning to the police, to the top police officer also. Across Tamil Nadu, TVK plans to file multiple cases also, and they are also planning to hold a protest across Tamil Nadu also condemning Udayanidhi Stalin remarks, Parameshwar.
1: Vijay, has the DMK responded to this complaint though yet and the entire matter?
2: Parameshwar, so far DMK has not yet officially responded to the comments made by Udayanidhi Stalin, but they yesterday on social media, especially on the X platform, the DMK supporters or some of the DMK members call Udayanidhi's statement is being twisted and the narrative is being said in a wrong way by a TVK supporters. Especially the DMK argue is the TVK wants to hide the failure of their administration over the Kaveri water issue. That's why they have using a few lines where Udayanidhi not even take Trisha name, but they are deliberately setting false narrative over it.
1: As always, Vijay, thanks so much for joining us with the clarity we need. All right, let's switch tracks now. For the seventh day now, Ranchi has been witnessing unprecedented student protests. Hundreds of job aspirants are on the streets there alleging serious irregularities in the JPSC, the JSSC, and other recruitment examinations. The Hemal Soren government has ordered a CID probe, but the protesters are pressing for CBI investigation, cancellation of the 14 JPC prelim exam, and a fresh test too. But with no breakthrough in sight, student leader Devendra Nath Mahato has begun an indefinite hunger strike now. Support, however, though, has largely remained symbolic. The BJP has accused the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Delhi are missing from the streets of Ranchi.
3: हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप, सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहे, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
4: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
3: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
5: जी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
6: बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई, तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपनी डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना, और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी ही चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
7: हम लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज़ को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए। कल सीजेपी के लीडर से बात भी हुई थी, जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई, तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखे हैं, और आप लोगों की मांग जायज़ है, तो आप लोग डटे रहिए, हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं।
8: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और इनका यह आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है, और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
9: पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है, और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीजों को दिखाइए। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं।
10: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं, एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया, और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यही डिमांड है सीबीआई जांच। क्यों? बिना सीबीआई जांच के हम मानेंगे नहीं।
11: The recent developments happening in Jharkhand, the protest by the aspirants of Public Service Commission shows the double standards of the Congress Party. Congress Party wants to take political points by supporting the CJP protest in Delhi and is maintaining a conspicuous silence over the protest by the aspirants in the Jharkhand Public Service Commission irregularities affected students.
12: अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका का वो वीडियो कॉल अब सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ, तो अब आप संतुष्ट हैं? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
13: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है, और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। आज 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएससी, सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही आपका है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा, और जहां तक कोई हावी होना चाहता है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
12: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ, और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है?
14: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का त्रिपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूँ कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इससे कोई सरकार के कानों तक कोई जूं नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
13: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
1: Well, we're stepping into a very quick break, but as always, the news and updates continue right here on NDTV 24/7. Stay tuned.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
7: so many attacks,
6: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right and Center.
6: Hard facts.
7: War struck country.
6: Hard questions.
7: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
8: In the Kargil area.
7: North Ukraine. In France. In Italy.
8: At Srinagar.
7: I am Iskandar.
9: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.
10: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
12: रियली
11: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
13: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
2: रियली
1: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: For the BJP, this is more than just a bipolar setback. It is a warning shot. The party has now lost two seats in states where it is in power, even as it comfortably retained Gujarat's Manjalpur. The usual advantage of being in power did not work in Bihar's Bagipur or MP's Datia. In Bagipur, the BJP's vote count dropped by roughly one-third. The party had won the seat by over 50,000 votes in the last election. This time, Prashant Kishore turned the BJP's traditional stronghold into his electoral launchpad.
1: Bagipur ka jo aaj mandate aaya hai, ye sirf vidhayak nahi chuna gaya hai. Bagipur ki janta ne bhajpa ke kendriya netritva ko ye message diya hai ki aap Samrat Chaudhary ke jagah kisi behtar vyakti ko Bihar mein mukhyamantri banaiye, Bihar ki bhi chinta kijiye.
0: The BJP's own preliminary assessment points to a drift in its core vote. Party leaders believe the RJD may have transferred a section of its support to Prashant Kishore. The RJD's Rekha Gupta had polled more than 46,000 votes in the previous election. This time, she failed to cross even 15,000. In Bagipur, the BJP also changed its candidate. Party leaders admit this may have sent a message that the party was taking its voters for granted. In Datia too, candidate selection became a problem. The seat had been associated with three-time winner Narottam Mishra. Denied a ticket, Mishra publicly expressed his displeasure and his supporters protested.
2: 16 tarikh se swayam yahi pe dera jamayenge sare karyakartaon ke saath main mere Datia ke malko ek ek darwaje par apna sheesh labaunga ek ek gaon ke andar jaunga.
0: He eventually campaigned for the BJP, but the damage may already have been done. The BJP is reluctant to directly link the Bagipur result to student protests. But the party leaders acknowledge that issues including the NEET paper leak agitation, UGC guidelines and police action have upset sections of its core support base. However, the biggest lesson may be organizational. The BJP has already said it will conduct a booth-wise review of the Bagipur result. The BJP will have to examine who stayed away, who shifted, why did the core vote weaken? And finally, did local leadership fail to energize voters? Two bipoles do not amount to a national trend. But for the BJP, they are an opportunity to course correct. Bureau Report, NDTV.
3: All right, crucially now, let's turn our attention to Jharkhand. For the seventh day now, Ranchi has been witnessing an unprecedented student protest. Hundreds of job aspirants are on the streets there, alleging serious irregularities in the JPSC, the JSSC and other recruitment examinations. So the Hemant Soren government, they have ordered a CID probe, but the protesters are pressing for a CBI investigation, the cancellation of the 14 JPSC prelim exam and a fresh test. With no breakthrough in sight, student leader Devendranath Mahato has begun an indefinite hunger strike now. Support, however, has largely remained symbolic. The BJP, though, is accusing the Congress of selective activism, asking why leaders who stood shoulder to shoulder with protesting students in Delhi are missing from the streets of Ranchi. We've lined up some crucial reactions for you. Listen.
4: We want your support. क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की, नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा, या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने
5: पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं, और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
4: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
6: ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, और इस दंश से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं, इसलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं। तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए।
7: जी बिल्कुल आना चाहिए, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई। तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपने डिमांड को रखा उनके सामने, उन्होंने सारा कुछ सुना और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ, आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अभी चला जाता लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है। तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं।
8: छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इनका ये आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो, हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे।
9: पिछले 7-8 साल में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेन्युइनली नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो गरीब बच्चे हैं उनको तो और भी नहीं मिल रही है। इसके लिए झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इन चीजों को दिखाइए। कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यूपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं।
10: 10 दिनों से हजारों छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम धरने बैठे हैं, एक ही डिमांड है सीबीआई जांच। सरकार का एक भी अदना सा अधिकारी उन बच्चों से संवाद नहीं करने गया और बच्चों को ने त्रिपाल लगाने का प्रयास किया तो प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। यही डिमांड है सीबीआई जांच। क्यों? बिना सीबीआई जांच के हम मानेंगे नहीं।
11: The recent developments happening in Jharkhand, the protest by the aspirants of Public Service Commission shows the double standards of the Congress Party. Congress Party wants to take political points by supporting the CJP protest in Delhi and is maintaining a conspicuous silence over the protest by the aspirants in the Jharkhand Public Service Commission irregularities affected students.
12: अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका का वो वीडियो कॉल अब सबने देखा है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हैं छात्रों के साथ। तो अब आप संतुष्ट हैं? आपकी भी बात हुई है क्या वो वीडियो कॉल पे? किस किन किन कौन छात्र हैं, क्या सब छात्र संतुष्ट हैं?
13: नहीं मैम, देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये छात्र का आंदोलन है और कोई भी सपोर्ट करे, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी का हो, ठीक है, वो नैतिक समर्थन करना ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम लोग का आंदोलन को हाईजेक करने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये छात्र आंदोलन है। आज 26 साल में इतना हम लोग छात्रों ने पीड़ा और वेदना सह के इस आंदोलन को आज खड़ा किया है अपना हक और अधिकार के लिए। तो इस आंदोलन में यही एक मूल भाव है कि भाई जो हमारा मांग है, जैसे जेपीएससी पीटी, एफआरओ, एसीएफ, बैकलॉग और जितनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जेएससी, सीजीएल, ये जो इतना बड़ा एग्जाम है जो लिया गया है, इसको तत्काल में तत्काल आंदोलन होते, मतलब आंदोलन के दौरान रद्द किया जाए और इसको सीबीआई जांच दे दिया जाए, क्योंकि सीआईडी का काम ही यहाँ का है कि पूरा सबूत को मिटाना, कि बाद सीबीआई जांच करे तो उसको कुछ सबूत ही ना मिले। तो मेन एजेंडा और जहां तक कोई हावी होना चाहता है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। कुछ ऐसा चीज है मैम, सामाजिक तत्व हम लोग में भी मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह का पॉलिटिकल चीज करना चाहते हैं, लेकिन वो हम उन लोग का मनसा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे।
12: ये बताइए कि कांग्रेस तो वहां पर सरकार में है जेएमएम के साथ और राहुल जी जो है पूरे देश में छात्रों की गूंज कर रहे हैं, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे विवेक, कि यहाँ पे तो आपकी खुद की सरकार है?
14: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप केंद्र सरकार से संसद में
13: कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाते हैं, आप दिखाते हैं और बताते हैं कि आपका अधिकार है सवाल करना, आवाज उठाना कोई भी अत्याचार के खिलाफ। लेकिन जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर छात्रों के साथ शोषण हो रहा है, वहां पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां पर आप कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप सरकार से बात करते हैं, मिलने आते हैं छात्रों से, तो आज हम कोई हम लोगों को इतना ये नहीं देखना पड़ता। अभी कल की बात बताते हैं, पूरी बारिश हुई, सब छात्र भींग गए, एक टेंट का त्रिपाल लगा के बस हम लोग उसी के अंदर पूरा दरी में भींगा हुआ था, उसी पे सो रहे हैं, पूरा मच्छर काटा। मैं बता दूं पिछले 3 दिन से दवा खा के मेरा फीवर हो चुका है, तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन मैं दवा खा के आंदोलन पे डटा हुआ हूं कि कुछ भी होगा लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इससे कोई कोई सरकार के कानों तक कोई जू नहीं रेंग रही है, ना ही कांग्रेस कुछ बोल रहा है।
14: मैम हम लोग का दो ही सरकार से मांग है, सारी एग्जाम रद्द हो और उसको सीबीआई तत्काल जांच दिया जाए कि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसका विश्वास सरकार पर जगे।
3: Alright, let's also move on to the other big stories we're tracking. A brief takedown of the Prime Minister's Facebook video has now snowballed into a larger debate over how powerful digital platforms should be regulated in India. The Parliamentary Standing Committee has pulled up Meta over the temporary removal of Prime Minister Modi's video, with members saying that an apology alone is not enough and demanding greater accountability. The committee chairman, Nishikant Dubey, has told the company that an apology alone was insufficient and he called for greater accountability. In fact, during a nearly 3-hour meeting, which was attended by representatives of Meta, Google, YouTube, X and Snapchat, the committee also widened the discussion beyond this one incident, raising questions over how social media companies moderate content, how their algorithms work, whether they're transparent enough and how they comply with Indian law. The BJP has argued that such incidents raise serious concerns about the functioning of global tech platforms. Members reportedly sought a personal apology from Meta CEO Mark Zuckerberg. Meta, meanwhile, you must note, has expressed regret over this incident, describing the removal as an error. But the committee chairman, Nishikant Dubey, has spoken about reviewing Meta's safe harbour protections under Section 79 of the IT Act. Listen in to his remarks.
15: मेटा इंडिया ने प्रधानमंत्री जी के जो कंटेंट को हटाया, ये मेटा इंडिया पहली बार ऐसा काम नहीं कर रही। उनका जो माइंडसेट है वो देश को डिस्टेबलाइज करने का है, और जब भारत के प्रधानमंत्री का जो है वीडियो उतारा जा सकता है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि 5 घंटे तक उतारा, 12:30 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक जो है वो कंटेंट गायब रहा, तो ये बड़ी सीरियस बात है। हमारी कमेटी ने 2 चीज़ें कही हैं, स्पष्ट तौर पर कही हैं कि ये माफ़ीनामा जो वो माफ़ी मांग रहे हैं, ये माफ़ीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
3: We'll continue to track all the finer developments for you as always. Quick break for now, back in a moment.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है
2: ब्रेड सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है?
3: कौन?
2: बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: सिनेमा तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
4: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस। सो आई रिवाइंड, आई पॉज, आई रिफ्लेक्ट, आई डिग अंटिल व्हाट्स बेरिड स्टैंड्स अप to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
6: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right, and Center.
5: Hard facts.
6: War struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
8: I am Mr. France.
6: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
10: Really?
9: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
6: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
5: So many attacks.
4: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
5: It's incredible.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
5: So many attacks.
4: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
5: It's incredible.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों,
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्टर मसाला।
9: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom. Weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा
10: मसाला। This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
12: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
13: Just few inches away is POK.
12: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
6: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
7: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
9: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: and these are the first sign.
1: I do not know what is happening in Delhi. Sitting in Bangalore or, you know, just relying upon the leaders has, you know, caused this damage to us, I think. So if you were, you know, be good contact and good touch and rapport with a high command, then probably I would have succeeded. And whosoever has been, you know, nursed by me, now they have been shortlisted and my name doesn't appear there. This is my fate. What can I do?
2: I am more disappointed with the fact that they have not given a proper reason for why I have been excluded. It's not that I want to be a minister. I've been a minister and I've had many opportunities in the Congress party. Only thing is, they should have told me, you know, these are the reasons. I do not know for what reason I've been dropped. Was a bad performer as a minister? Do I have any corruption charges? Was I not working well for the party? I've always been loyal to the party. And whatever party responsibility they've given, I've always tried to do my best. And as district in charge minister of Mangalore, I've done a good job. As health minister, I think I've done a good job.
3: News now from Bihar, where former poll strategist and Jan Swaraj Party chief Prashant Kishore has become the newest MLA of the Bihar Assembly after he broke the BJP's 30-year winning streak in Bankipur bipole elections, a seat vacated by BJP President Nitin Naveen. Prashant Kishore defeated his nearest rival, BJP's Neeraj Kumar, by a margin of 19,324 votes on his poll debut. Conceding the mandate, BJP President and former five-time MLA from Bankipur, Nitin Naveen, said that his party will earnestly introspect the results. Meanwhile, PK's win has sent ripples across the Bihar electorate, with Jan Swaraj emerging as a serious alternative to RJD with a new voter base and marking the first defeat for BJP since Samrat Chaudhary became chief minister.
4: प्रशांत जी, लोग बोल रहे हैं कि जो सबसे मुश्किल किला था उसको आपने फतह किया।
5: नहीं, सबसे मुश्किल किला तो क्या कहेंगे, मतलब बीजेपी का स्ट्रॉन्ग सीट रहा है, बीजेपी कभी नहीं हारी है बाकीपुर, तो उस नज़रिए से आप कह सकते हैं कि उनका मजबूत सीट था, लेकिन किला तो जनता का ही होता है, जनता ही बनाती है, जनता ही उसको हटाती है। नहीं, मतलब अगर आप देखेंगे 422 बूथ है और जो एनालिसिस हो रहा है किस जाति ने वोट दिया, किस वर्ग ने वोट दिया है, 422 बूथ में दो तिहाई से ज़्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, जन स्वराज आगे, तो ये दिखाता है कि हर बूथ पर, हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों ने वोट दिया है, जाति धर्म दल और नेता की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर वोट दिया है। और तीन साल से जन स्वराज यही प्रयास कर रहा है, यही बात लोगों को सिखा रहा है कि एक बार आप जाति धर्म दल और नेता के से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर आदमी को वोट दीजिए। बाकीपुर की जनता ने उस बात को सुना है, समझा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं और कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने ये विश्वास व्यक्त किया है उनके साथ मिलकर उनके जीवन में बेहतरी आए, उसके लिए प्रयास करेंगे।
4: आपने बोला भी कि हम नाली और गली पर ये चुनाव नहीं लड़े हैं, हमारा लार्जर इशू है, और आपने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला किया।
5: नहीं, लार्जर इशू ये है कि बिहार तो बाकीपुर के एक विधायक से नहीं सुधरेगा, बिहार तो तब सुधरेगा जब बिहार में अच्छे आदमी मुख्यमंत्री हों, तो ये जरूर मुद्दा रहा है हम लोगों का। और हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, एनडीए को दिया है, अगले चार वर्ष भाजपा की सरकार रहनी है, तो हम लोग का ये पूरा प्रयास है कि ये दबाव बनाकर रखें, भाजपा के नेतृत्व को ये संदेश देकर देते रहें, और बाकीपुर की जनता ने उसमें अपनी आवाज़ जोड़ी है, अपना सहयोग दिया है। जहाँ भाजपा के नेतृत्व को ये बात बताने का प्रयास है कि आप किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, वो कुशवाहा हो या किसी अन्य जाति का हो, इससे फर्क नहीं है, आदमी अच्छा होना चाहिए ताकि बिहार में पढ़ाई की बात हो, बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन बंद करने की बात हो। आखिर मोदी जी अगर गुजरात की चिंता कर रहे हैं, मोदी जी अगर यूपी की चिंता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो बिहार भी तो भारत का हिस्सा है, हम लोगों ने भी तो वोट दिया है मोदी जी को, तो ये मोदी जी की जिम्मेवारी है कि बिहार में सबसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाए ताकि यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो।
4: विधानसभा में जो आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहा था उसके बाद एक तरह से ऑक्सीजन मिल गया जन स्वराज को।
5: देखिए, पार्टी का लोकतंत्र है, कभी आप जीतेंगे कभी हारेंगे। अभी भाजपा यहाँ हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा की ताकत कम हो गई।

0: भाजपा का जो अपना विचार है, अपना प्रयास है, वो तो जारी रहेगा। आज जो बाकीपुर में हम लोग की जीत हुई है, अगर मैं 3 साल वो प्रयास नहीं करता तो थोड़ी ना हमको आज बाकीपुर के लोगों ने जिताया होता। तो अगर आप ईमानदारी से समाज में लगकर प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको दिखेगा, वो बाकीपुर में कल दिखा है।
1: अब आगे का एजेंडा क्या है प्रशांत किशोर का?
0: आगे का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में एक अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने, बिहार में कि बिहार की जो सरकार है उसका मुख्य मुद्दा अपराध और अपराधी न होकर पढ़ाई शिक्षा और पढ़ाई रोजगार और पलायन को रोकना हो, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, और जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह बने, ये हमारा मुख्य मुद्दा है, इसी पर हम चुनाव लड़े हैं। इसके साथ साथ बांकीपुर में अगले 2 से 3 महीने में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार मैंने जो वादा किया है लोगों से, विधायक और विधायक विधायकी से जुड़े हुए सारे मामलों में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको नली गली वगैरह की जो समस्या है, राशन कार्ड पेंशन की समस्या है, वो खत्म, उसमें आपको सुधार दिखेगा। एक वादा मैंने और किया है जो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहता हूँ कि अगले 1 साल में बांकीपुर के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा, अगर नहीं होगा तो उन इलाकों के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी, ये इस पर मैं 1 साल में काम करके आपको दिखाऊंगा।
1: आप विपक्षी एकता के लिए भी काम करने की बात?
0: नहीं, हमारा बिहार फोकस है, मैं बिहार में
1: बिहार की विपक्षी
0: नहीं, बिहार में हम लोग लड़ ही रहे हैं, बिहार में विपक्षी एकता की कोई जरूरत नहीं है। जो बिहार में जरूरत समाज में काम करने की है, बिहार में जरूरत पढ़ाई की है, बिहार में जरूरत रोजगार की है, विपक्षी एकता और समीकरण हम लोग बहुत देख चुके, उसका कोई महत्व नहीं है। बांकीपुर की जनता ने जो विश्वास जताया है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनके लिए भी मिलकर उनके साथ काम करेंगे, बांकीपुर बेहतर बने, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो, कम हो, खत्म ना हो तो कम से कम कम हो, और साथ ही यहाँ इसको मॉडल विधानसभा के तौर पर हम लोग डेवलप करने की कोशिश करें। और उसमें एक जो पैमाना मैंने रखा है शिक्षा का, कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके, उसके लिए हर संभव अगले 1 साल में प्रयास करेंगे। एक कोई वीडियो चला रहा है कि इन्होंने कहा था कि हम अभी कह रहे हैं कि बांकीपुर बेंगलोर नहीं बन सकता है, पहले कहा था, पहले भी ये नहीं कहा था, पहले ये कहा था कि 20 वर्ष में बांकीपुर बेंगलोर से भी बेहतर बने, ऐसा एक ब्लूप्रिंट अगले 2 साल में बनाएंगे। ब्लूप्रिंट बनाने की बात है, विधायक की क्षमता ये नहीं कि हम बेंगलोर बना देंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं, राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलते हैं। हमने जो कहा है कि बिहार बांकीपुर में विधायक और विधायकी से जुड़े मामलों में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कही है कि यहाँ पर हमारे आचार विचार व्यवहार से लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे देखकर। और तीसरी बात मैंने कही है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय है, खासकर गरीब इलाकों में, उसको उसमें गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखेगा, अगर नहीं होगा तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है, हर हालत में 1 साल में बांकीपुर में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करके दिखाएंगे।
2: All right, so many promises are there being made by Prashant Kishore, the new MLA of Bankipur. With that, we'll slip into a short break. More news updates on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
11: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
12: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
13: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
14: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
11: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
12: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
13: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
14: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
15: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
16: Aapka parcel phir se hamare ghar pe aaya hai.
6: Kuch to baat hai is dil mein.
17: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
18: सरसों से सरसों।
19: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम। Weekdays at 4 PM.
20: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
21: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
20: आप कहाँ से हैं?
21: हरियाणा।
20: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
21: डेढ़ महीने पे।
20: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
21: 3 साल।
20: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
21: बहुत।
20: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
21: श्रीनगर तक अलाउड।
20: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
22: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
15: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
23: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
19: The attack was captured on CCTV. She was stabbed over 20 times within 30 seconds. Investigators say that this was no random act of violence, but the culmination of months of alleged stalking that had already been reported to the police by the mother of two. Ishika Verma reports.
24: A teacher under attack. Inside her own school. She tries to pull away, but the knife keeps coming again and again and again. A school staff member rushes to help. The attacker threatens him too before fleeing. 29-year-old Sandhya never survived this attack. Investigators say she was stabbed more than 20 times.
25: जो डिसीज्ड है वो उससे थोड़ी दूरियां बनाना चाह रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जो अमित था वो लगातार उसे पुश कर रहा था और कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश जो है वो कर रहा था।
24: दिस मर्डर इन्वेस्टिगेटर से डिड नॉट कम विदाउट अ वार्निंग। संध्या हैड ऑलरेडी फाइल्ड मोलेस्टेशन कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड अमित एंड एट द पुलिस स्टेशन अमित हैड पब्लिकली अपोलोजाइज्ड एंड नाउ पुलिस बिलीव दैट अमित कमिटेड दिस मर्डर टू अवेंज द अर्लियर कंप्लेंट।
26: द अक्यूज्ड 21-year-old अमित वाज अरेस्टेड विद इन आवर्स। Investigators believe the attack was an act of revenge after Sandhya rejected his advances and sought police help.
27: न्यूली रोड बन रहा है तो डस्ट कई बार डस्टिंग होती रहती है, उस चक्कर में लोग कई बार स्वापी वगैरह, हमारे देहात का इलाका है, स्वापी से मुंह ढक लेते हैं बाइक चलाने वाले जो लोग होते हैं, उस टाइप से वो आया। और अमूमन कई बार एक दो बार उसके हस्बैंड भी आए थे क्योंकि वो भी बाइक से ही जाते हैं, तो वो भी ऐसा करते थे। और उसने आके अपनी पहचान जो बताई वो बताई, बोलो विक्की आया है, संध्या मैडम से बोलो, संध्या मैडम को बोला, बोलो विक्की आया है। विक्की उसके हस्बैंड का नाम था, तो वो फिर वो उसी हिसाब से बुलाया और उसी हिसाब से वो मेरे ख्याल से विक्की के नाम से वो आ भी गई लड़की।
26: A complaint had already been filed. An apology had already been made. Yet, a teacher was killed inside her school, stabbed over and over again. The murder of Sandhya is once again raising uncomfortable questions about whether stalking complaints are being acted upon before they turn into little violence. Bureau Report, NDTV.
19: All right, an absolutely horrifying and frightening murder right here in the National Capital Region. With that, we'll slip into a short break. More on the other side. Stay with us.

0: आभार व्यक्त कर रहा हूं और कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने ये विश्वास व्यक्त किया है उनके साथ मिलकर उनके जीवन में बेहतरी आए उसके लिए प्रयास करेंगे।
1: आपने बोला भी कि हम नाली और गली पर ये चुनाव नहीं लड़े हैं, हमारा लार्जर इशू है और आपने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला किया।
0: नहीं, लार्जर इशू ये है कि बिहार तो बांकीपुर के एक विधायक से नहीं सुधरेगा। बिहार तो तब सुधरेगा जब बिहार में अच्छे आदमी मुख्यमंत्री हों, तो ये जरूर मुद्दा रहा है हम लोगों का। और हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, एनडीए को दिया है, अगले 4 वर्ष भाजपा की सरकार रहनी है। तो हम लोग का ये पूरा प्रयास है कि ये दबाव बनाकर रखें, भाजपा के नेतृत्व को ये संदेश देकर देते रहें और बांकीपुर की जनता ने उसमें अपनी आवाज़ जोड़ी है, अपना सहयोग दिया है। जहां भाजपा के नेतृत्व को ये बात बताने का प्रयास है कि आप किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, वो कुशवाहा हो या किसी अन्य जाति का हो, इससे फर्क नहीं है, आदमी अच्छा होना चाहिए ताकि बिहार में पढ़ाई की बात हो, बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन बंद करने की बात हो। आखिर मोदी जी अगर गुजरात की चिंता कर रहे हैं, मोदी जी अगर यूपी की चिंता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो बिहार भी तो भारत का हिस्सा है, हम लोगों ने भी तो वोट दिया है मोदी जी को। तो ये मोदी जी की जिम्मेवारी है कि बिहार में सबसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाए ताकि यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो।
1: विधानसभा में जो आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहा था उसके बाद एक तरह से ऑक्सीजन मिल गया जनसुराज को।
0: देखिए, पार्टी का लोकतंत्र है, कभी आप जीतेंगे कभी हारेंगे। अभी भाजपा यहाँ हारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा की ताकत कम हो गई। भाजपा का जो अपना विचार है, अपना प्रयास है, वो तो जारी रहेगा। आज जो बांकीपुर में हम लोग की जीत हुई है, अगर मैं 3 साल वो प्रयास नहीं करता तो थोड़ी ना हमको आज बांकीपुर के लोगों ने जिताया होता। तो अगर आप ईमानदारी से समाज में लगकर प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको दिखेगा, वो बांकीपुर में कल दिखा है।
1: अब आगे का एजेंडा क्या है प्रशांत किशोर का?
0: आगे का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में एक अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने, बिहार की जो सरकार है उसका मुख्य मुद्दा अपराध और अपराधी न होकर पढ़ाई शिक्षा और पढ़ाई रोजगार और पलायन को रोकना हो, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए और जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह बने, ये हमारा मुख्य मुद्दा है, इसी पर हम चुनाव लड़े हैं। इसके साथ साथ बांकीपुर में अगले 2 से 3 महीने में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार, मैंने जो वादा किया है लोगों से, विधायकी से जुड़े हुए सारे मामलों में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको नली गली वगैरह की जो समस्या है, राशन कार्ड पेंशन की समस्या है, वो खत्म, उसमें आपको सुधार दिखेगा। एक वादा मैंने और किया है जो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहता हूं कि अगले 1 साल में बांकीपुर के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा, अगर नहीं होगा तो उन इलाकों के गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी। ये इस पर मैं 1 साल में काम करके आपको दिखाऊंगा।
1: विपक्षी एकता के लिए भी काम करने की बात?
0: नहीं, हमारा बिहार फोकस है, मैं बिहार में नहीं, बिहार में हम लोग लड़ ही रहे हैं, बिहार में विपक्षी एकता की कोई जरूरत नहीं है। जो बिहार में जरूरत समाज में काम करने की है, बिहार में जरूरत पढ़ाई की है, बिहार में जरूरत रोजगार की है, विपक्षी एकता और समीकरण हम लोग बहुत देख चुके, उसका कोई महत्व नहीं है। बांकीपुर की जनता ने जो विश्वास जताया है और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है उनके लिए भी मिलकर उनके साथ काम करेंगे, बांकीपुर बेहतर बने, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो, कम हो, खत्म ना हो तो कम से कम हो, और साथ ही यहाँ इसको मॉडल विधानसभा के तौर पर हम लोग डेवलप करने की कोशिश करें। और उसमें एक जो पैमाना मैंने रखा है शिक्षा का, कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके, उसके लिए हर संभव अगले 1 साल में प्रयास करेंगे। एक कोई वीडियो चला रहा है कि इन्होंने कहा था कि हम अभी कह रहे हैं कि बांकीपुर बेंगलोर नहीं बन सकता है, पहले कहा था, पहले भी ये नहीं कहा था, पहले ये कहा था कि 20 वर्ष में बांकीपुर बेंगलोर से भी बेहतर बने, ऐसा एक ब्लूप्रिंट अगले 2 साल में बनाएंगे। ब्लूप्रिंट बनाने की बात है, विधायक की क्षमता ये नहीं कि हम बेंगलोर बना देंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं, राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलते हैं। हमने जो कहा है कि बिहार बांकीपुर में विधायक और विधायकी से जुड़े मामलों में कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। दूसरी बात मैंने कही है कि यहाँ पर हमारे आचार विचार व्यवहार से लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे देखकर। और तीसरी बात मैंने कही है कि 1 साल के अंदर यहाँ पर जो सरकारी विद्यालय हैं, खासकर गरीब इलाकों में, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखेगा, अगर नहीं होगा तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। हर हालत में 1 साल में बांकीपुर में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करके दिखाएंगे।

0: most recently as an ode to their iconic Appadi Podu song. Trisha and Vijay danced together in a song in the now Chief Minister's last release, Goat.
1: अरे तू पागल है क्या? मिशन पर फैमिली को कौन ले जाता है? और वो भी बैंकॉक, बीवी बच्चे समेत.
0: A career marked by grace, style, and unmatched commercial success, Trisha continues to be a household name in Tamil cinema. Bureau Report, NDTV.
2: And we have some breaking news coming in for you. The political war of words in Maharashtra has only intensified after the Congress referred to Deputy Chief Minister Sunetra Pawar as a mute doll. In a social media post, the remark triggered a strong backlash from the NCP, with party workers also staging a protest outside the Maharashtra Congress office and also accusing the Congress of using a derogatory term once directed at the former Prime Minister Indira Gandhi. Deputy Chief Minister Eknath Shinde also condemned the remark, calling it an insult to Maharashtra's first woman Deputy Chief Minister and to all women across the state. So what happened was that on Monday, the Maharashtra Congress posted a clip from Sunetra Pawar's press conference showing MLA Dhananjay Munde stopping her from taking questions from reporters about the law and order situation in Bid, after which Maharashtra Congress called Sunetra Pawar a mute doll. Take a listen.
3: ये सिर्फ सुनेत्रा ताई पवार इनका अपमान नहीं है, ये महाराष्ट्र के तमाम माता बहनों का अपमान है. और आपने देखा था जब महाराष्ट्र की माता बहनों का अपमान होता है, इसी कांग्रेस ने, यही इंडिया अलायंस ने, यही महाविकास आघाड़ी ने 2024 में हमारी माता बहनों का अपमान किया था. और उसी वक्त माता बहनों ने उनको सबक सिखाई, उनको घर पे बिठा दिया. ये इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए और मैं कहूंगा कि उनकी पूरी तरह मति भ्रष्ट हुई है, इसीलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगी चाहिए.
4: आपने क्या बोला था कांग्रेस में, क्या बोला था हमारे नेता ने? गुंगी गुड़िया है बोला ना, वो इससे तो गालियां नहीं होती है. और बार बार उनके प्रेस में जो कोई हस्तक्षेप करते, ये ठीक नहीं है. रहा सवाल कि जब ये गुंगी गुड़िया बोली तो गुस्सा आया, और ये लोग सत्ता में बैठे है, इनको तो कोई आचार नहीं है, विचार नहीं है, कोई आइडियोलॉजी है. सत्ता के बगैर ये जी नहीं सकते, सत्ता के भूखे ही है, सत्ता के पीछे दौड़ने वाले कंगाल ही है. और ये आकर यहाँ दत्तागिर करते, जब ये बच्चों के सर फोड़े जा रहे थे, बच्चियों के साथ में गलत व्यवहार होता हो रहा था, इतने सारी घटनाएं लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में हो रहे थे, तब तो इनको हिम्मत नहीं आई, तब मर्दानगी नहीं दिखी.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: POK के firing range में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: POK के firing range में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आर्थर मसाला।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
12: POK के firing range में खड़े हैं।
13: Just few inches away is POK.
12: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
14: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
15: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
16: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
17: दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
18: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
19: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट।
20: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
21: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
22: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.
14: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
23: You're watching NDTV 24/7.
24: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
14: When stories have impact.
25: Bhagwatar Joshi, managing editor and prime time.
26: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmija Joshi, and as always on the day's biggest stories, the buck stops. The distance between Patna and Ranchi is just a few hundred kilometers, 326 kilometers to be precise. On an ordinary day, it would take you 6 hours and 19 minutes to travel that distance. Today, the Congress's students' wing, the NSUI, carried out a protest in Patna. As they tried to march to the Chief Minister's residence, the police turned the water cannon on them. The NSUI workers grabbed this opportunity to do an impromptu little rain dance at the spot. The NSUI's Patna march was one in a series to demand justice for students. But just 6 hours 19 minutes from that Patna rain dance sat actual students camping in an open field inside a stadium in Ranchi, protesting against irregularities in entrance examinations, asking why the jobs that they deserve, that they study for, that they slog for, are being sold. But for these kids in Ranchi, there is no NSUI, there is no government, there is no listening ear. When it rains in Ranchi, for these children, it doesn't mean an opportunity to dance and frolic. It means that they will have to somehow squeeze under one plastic sheet like hundreds of others like them. Desperate but determined, all these young men and women have asked, where are those who were at Jantar Mantar? Why couldn't they make their way to Jharkhand? Why couldn't they cover that distance? The answer is simple. The Congress is taking its Chhatro Ki Goonj not to Ranchi, not even to Jharkhand, but to Prayagraj in Uttar Pradesh. This weekend, Rahul Gandhi is going to be holding his Chhatro Ki Goonj in poll-bound Uttar Pradesh. The Aam Aadmi Party is putting all its focus on its agitation. They are on the streets, they are marching. But this time it is against the E20 petrol. That is their new campaign. That is the issue that they are marching on. The Cockroach Janata Party is waiting for their brainstorming session on the 5th. After that meeting, they will decide what to do next. Whether Ranchi or Punjab is something worth their attention or not. As for the state government, they are absolutely clear. We've made the arrests. The CID is doing its job. And as for those who are sitting at the Jaipal Munda Stadium in Ranchi, they will just have to wait for the time when their pain perhaps becomes insta-worthy, when it becomes viral enough.
0: मैंने पहले भी कहा है सरकार के आंख भी हैं कान भी है संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक करकर लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे
1: अब नीमन जी भी हैं आप जरूर आप कार्यक्रम का हिस्सा भी बनिए और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी हैं और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए झारखंड सरकार इसी पे काम
2: जिस तरह से युवा जेपीएससी जेएसएससी लेकर रांची में आंदोलन कर रहे हैं इस पर क्या
3: यार बाबा का आशीर्वाद सबको लगने दो भाई बोल बम बोलो भाई
4: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री स्टूडेंट्स आर ऑन द स्ट्रीट इन सिवियर पेन दे डोंट हैव वर्क They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do.
7: Double standards hai Congress party ka. Jharkhand mein प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं वो आंदोलन कर रहे हैं यह हम देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही क्योंकि यह सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की
26: And joining us now on the show, we have Pradeep Bhandari, National Spokesperson of the BJP. From the Congress, we have Ashwini Kumar Mishra joining us. We have Rajesh and Ankit, both of them who are at the stadium in Ranchi. And my first question is to Mahua Majhi, Member of Parliament of the JMM. Mahuaji, thanks very much for speaking to us. I want to start by asking you, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है एक स्टेडियम के अंदर बारिश में धूप में बच्चे बैठे हुए हैं सरकार से कोई मिलने क्यों नहीं गया उनसे Why has it taken so long? People who are so proactive in Jantar Mantar, why have they become so inactive in Jharkhand?
9: देखिए हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर है माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ पर बच्चों के लिए अपने आप को पता होगा कि पुलिस की जांच हो गई, गिरफ्तारी हो गई, लगातार वो चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो, भविष्य में कभी भी इस तरह से पेपर लीक ना हो और एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए छात्रों के हित में वो लगातार काम कर रहे हैं। पिछली सरकार की तुलना में आप देख लेंगे कि किस तरह से वो रेगुलराइज कर रहे हैं, मरंग गोमके स्कॉलरशिप योजना के तहत उनके विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 25 लाख तक हायर एजुकेशन के लिए सरकारी गारंटी पर लोन दिया जा रहा है, अभी ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग कोटा के इंस्टीट्यूट से यहाँ पर रांची में कराया जा रहा है, मेधावी छात्रों को चुनकर करीब 300 बच्चों को कोचिंग कराया जा रहा है सरकारी खर्चे पे, रहना खाना सब कुछ, तो वो काम कर रहे हैं उनके लिए और वो चाहते हैं कि उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं हो, सब कोई
8: बहुत मिलने गई वहाँ पर
9: हमारी सरकार, और जैसे ही पता चला
8: सरकार से कोई मिलने गया इन बच्चों से,
9: मैं तो दिल्ली में हमारा पार्लियामेंट चल रहा है ना उसी को, हाँ वो लोग कर रहे हैं, मैं तो पार्लियामेंट में हूँ और वहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों से बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं जी।
8: ये बताइए, राजेश और अंकित दोनों हमारे साथ हैं, आज मुख्यमंत्री ने कहा सरकार सचेत है, सरकार सब कुछ देख रही है, सरकार सब कुछ सुन रही है, न्याय होगा। अंकित, न्याय क्या है
9: जी?
8: न्याय मिला है आपको?
9: बिल्कुल
8: न्याय हो रहा है अंकित?
9: बिल्कुल न्याय होगा, न्याय यही होगा।
8: दो बच्चे हमारे साथ न्याय जिनकी बात सुन, बताइए अंकित,
9: उठा लीजिए।
10: मैम, अगर हमारे साथ न्याय हो रहा होता, अगर हम लोग न्याय हम लोगों के साथ होता तो आज हम लोग इस बारिश में क्यों भींग रहे होते? मैम देख रहे हैं, मैम बारिश से पूरा भींगे हुए हम दोनों, बारिश हो रही है मैम, हम लोग बारिश में क्यों रहते हैं? हम लोग किसान का पुत्र मैम, अभी पता है था, अभी धान रोपने का सीजन, हम लोग धान रोप रहे होते खेत में, लेकिन अगर न्याय हो रहा होता तो हम लोग यहाँ पे खाली मैदान में नहीं बैठे होते मैम, बारिश में नहीं भींग रहे होते। पिछले 4-5 साल से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए मैम, उसका रिजल्ट है ये, ऐसा नहीं है मैम कि अचानक से आकर के हम लोग बैठ गए धरने पे। मैम ये परेशानी एक दिन का नहीं है मैम, लगातार हम लोग परेशान हुए हैं, पिछले चार पांच साल इतना ज्यादा परेशान हुए मैम, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम लोगों को शौक थोड़ी ना मैम की बारिश में भींगते रहे, हम लोग अभी घर में होते, हम लोग किसान का बेटे, हमारे घर में खेती होता है, अभी हमें अपने घर में खेत में मजदूरी करना था, अपने माँ पिताजी को मदद करना था खेती करते समय, यहाँ पे इस बारिश में नहीं भींगना था मैम, देख रह सकते मेरा पाल देख लीजिए आप, कहाँ न्याय हो रहा है? कुछ न्याय नहीं हो रहा है, अगर न्याय होता तो जेएसएससी सीजीएल इतना बड़ा एग्जाम था, इतना बड़ा करप्शन हुआ इसमें, नेपाल ले जाकर के प्रश्न पढ़ाया गया और 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन जो सही पाया गया, सीआईडी की रिपोर्ट कर रही है, उस रिपोर्ट को दबा करके कोर्ट में यह बोल दिया गया कि फ्री क्वेश्चन, इट इज फ्री क्वेश्चन, 120 आउट ऑफ 150 फ्री क्वेश्चन होते हैं, मैं पूछता हूँ फ्री क्वेश्चन है ये? उस परीक्षा को एकदम सरकार ने एकदम दबाने का काम किया, जबकि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना चाहिए था, उसी जेएसएससी सीजीएल से सारा तार जुड़ा हुआ मैम, उसी से आज जेपीएससी तक पहुंचा, समझ रहे हैं? जेएसएससी सीजीएल में अगर उस दिन उन चोरों को पकड़ लिया जाता, पेपर माफियाओं को पकड़ लिया जाता मैम, तो आज जेपीएससी का ये हश्र नहीं,
11: जेपीएससी का ये हश्र होने का जो आप देख रहे हैं, 14 जेपीएससी लोग जितने भी
10: सारे एग्जाम में आज धांधली हुआ है, वो एमआर को बाहर ला करके रंगा गया, इसमें सारे के सारे अगर जिम्मेदार मेन रूप से देखा जाए तो जेएसएससी सीजीएल है,
8: बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, सिर्फ इन दो बच्चों को बता दीजिए, ये भी किसान के बच्चे हैं, वहां पर मजदूर के बच्चे बैठे हैं, गरीब के बच्चे बैठे हैं,
9: नहीं सही नहीं, मैं इनसे,
8: ये इन्फ्लुएंसर भले से ही ना हो, ये वायरल नहीं होंगे, ये इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, ये टिकटॉक पे नहीं होंगे,
9: मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई की हूँ, नेट क्वालिफाई की हूँ, मुझे इनका दर्द अच्छी तरह से पता है, कोई व्यक्ति जब महीनों की मेहनत से कोई तैयारी करता है उसके बाद इस तरह से उनके साथ हो तो मैं समझ सकती हूँ कि इनका कितनी दुख है, कितना तकलीफ है, लेकिन सरकार अभी गंभीर है, इतना मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा, जो दोषी है हम लोग चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इतनी सजा मिले कि भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़ कर सके, और हमारी सरकार साथ है, आप रहिए, जो भी हुआ है बहुत दुखद था, बहुत दुखद है, हम लोग आपके, हमारी संवेदना आपके साथ है जी।
8: महुआ जी, ये बारिश में बैठे हैं, इनसे कोई मिलने तक नहीं आया है, मुख्यमंत्री आवास 2 किलोमीटर दूर है वहां से, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, हम सब कुछ सहते हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे मुख्यमंत्री वहां मिलने के लिए, बारिश में ये बच्चे बैठे हुए हैं।
9: जी बिल्कुल, आज गुरुजी की पुण्यतिथि है हमारे दिशम गुरु की, और वो गांव में है मान्य, तो मैं हम लोग चाहते हैं कि इनकी समस्या का वो जल्द से जल्द समाधान करें, कि कभी ये नौबत ही नहीं आए कि उनको इस तरह से अपना घर छोड़कर, अपना खेत छोड़कर इस तरह से धरने पर बैठना पड़े। उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, उसे और सुरक्षित बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं, हम लोगों से सबसे वो यही बोल रहे हैं कि देखिए आपको पता होगा कि विदेशों में ये पढ़े इसके लिए मरंग घूम के सम्मान दिया जा रहा है, गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना मैंने बताया, सावित्री बाई फुले, और हर तरह से इनको सुविधा देने के लिए वो बिल्कुल, और आपको पता होगा कि पिछले भाजपा के कार्यकाल में सेशन कितना लेट था और कितनी तरह के पेपर लीक और हर तरह की घटनाएं उस समय हुई थी। अंकित धीरे धीरे जो घुन लगा हुआ था उस सिस्टम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसको सुधार रहे हैं और काफी हद तक सफलता मिली है।
8: आप ही अपने मन की बात बताइए अंकित और राजेश,
9: था जो अभी वो क्लियर कर रहे हैं कि आने
12: मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, माननीय जो मैम बोले कि हम ये योजना लाए, गुरु जी क्रेडिट योजना लाए, उनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए, हम उस एजेंसी को एग्जाम लेने का दायित्व दिए जो माननीय आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था, उसे हम एग्जाम लेने का प्रभार दिए। इसके अलावे मैम को ये भी बोलना चाहिए था कि हम एक ऐसे आदमी को एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर बना दिए जो रांची में होटल में लीज लेता है, होटल को लीज लेता है और वहां पर बच्चों का भविष्य के साथ खेलता है, पेपर पढ़वाता है और पैसा के आधार पर नौकरी बेचता है, ये भी माननीय जी को बोलना चाहिए। और मैम अभी महुआ मांझी मैम
9: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
12: सरकार का संवेदना बच्चों के साथ
9: बर्दाश्त,
12: मैम बताइए आपका संवेदना, मैम आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता, हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम बीजेपी से हैं, हम कोई पार्टी वाला
9: छात्र हैं, नहीं आप लोग छात्र हैं,
12: हमें जरा पार्टी का चीज,
9: आप लोग
12: मैम सुनिए मेरे बात सुनिए,
9: आप लोग छात्र हैं
12: मैम, आप अगर बात सुन रहे तो मेरे बात सुनिए मैम, जिस समय हम लोगों को लगा ना कि हम लोगों को पार्टी जरा सा भी लगा कि कोई पार्टी का मंच बन रहा है, हम लोगों ने अपना मंच अलग कर लिया मैम, पता नहीं आपको क्या, आपको नहीं पता कि जेल कम मंच से हम लोग अलग हो गए,
9: बिल्कुल पता है
12: मैम, हम लोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं
9: जी बिल्कुल अलग,
12: कोई काम ढंग का नहीं हो रहा है,
9: आप लोग छात्र हैं, आपके भविष्य की चिंता हमें,
12: मुझे मैम राजनीतिक रूप से मुझे बात करना नहीं आता,
9: आप निश्चिंत रहिए आपको आश्वासन देते हैं हम लोग भविष्य में,
12: आश्वासन क्या करेंगे मैम, कितना आश्वासन लें, आज से आश्वासन लें मैम, आपने जैसे सीजन को बर्बाद कर दिया, हम लोग लाइफ को बर्बाद कर दिया,
9: इस बार हम भी आश्वासन दे सकते हैं
12: मैम, मैम हम आपका आश्वासन क्या करें बताइए,
9: देखिए कुछ लोगों की गलती के कारण आपका भविष्य
12: पार्सल वापस आ जाएगा, आज जेपीएससी में भी वही हाल हो गया, क्या आपके आश्वासन से हमारा भविष्य वापस आ जाएगा उस समय, मैम काम कीजिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आप लोग राजनीति जो करने कीजिए, हम लोग छात्रों को कोई मतलब नहीं है, परीक्षा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, विभाग होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट एजेंसी से एग्जाम लीजिए, ऐसा नहीं कि चोर चुहार एजेंसी से आप एग्जाम ले लिवाते हैं, भविष्य खाता है,
9: इस बार हम लोग गारंटी देते हैं, हम लोग गारंटी देते हैं,
8: बार बार गारंटी मिली है इनको, एंड अगेन एटलीस्ट नाउ दीज चिल्ड्रन हैव फोर्स्ड पीपल टू सिट अप एंड लिसन अश्विनी मिश्रा, बिकॉज सो फार एंड आई वांट टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन फॉर द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग राइट नाउ, यू've got two young men, Rajesh and Ankit, who are sitting under an open sky. क्या ये सच है अंकित कि आपका जो वहां पर जो टेंट लगाया हुआ था उसको भी हटा दिया गया, क्या बिजली पानी खाना कुछ मिला है क्या वहां पे?
12: मैम पहले हटाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन हम लोग बारिश में उस दिन भीग रहे थे बहुत ज्यादा मैम, सारे लोग हम लोग गुस्सा गए थे, टेंट वाला को मंगवाए थे मैम तो पुलिस बार बार अलाउ नहीं कर रही थी, हम लोग लड़ झगड़ के टेंट लगवाए मैम, तो अभी कोई उपाय से रहने लायक का मंच बन पाया मैम, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट है मैम, चूंकि हजारों की संख्या में भीड़ है मैम, तो लगभग 1500-2000 बच्चे ही अंदर रह पाते मैम, तो हम लोग बाहर ही रह जाते हैं मैम, कि बाहर से बहुत दूर दूर से छात्र आए, हम लोग तो यहाँ तो शुरू से हैं, हम लोग भीगना मंजूर है मैम, बस हमारा मांग मान लिया जाए।
8: यू नो अश्विनी मिश्रा, व्हेन दीस पीपल वर गेटिंग वेट अंडर एन ओपन स्काई, एनएसयूआई वाज डूइंग अ रेन डांस इन पटना, व्हेन अ वाटर कैनन वाज यूज्ड ऑन देम, टुडे पटना इज बेयरली 6 hours drive from Ranchi. अगर आपकी NSUI पटना में मार्च कर सकती है, दिल्ली में मार्च कर सकती है, मुंबई में मार्च कर सकती है, भोपाल में मार्च कर सकती है, तो रांची में मार्च क्यों नहीं कर सकती सर? वहां पे तो आपको NSUI की जरूरत नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है JMM के साथ, आप वहां पटना में रेन डांस कर रहे हैं वाटर कैनन के सामने, यहां पे बच्चे ना, वहां बच्चे भीग रहे हैं बिकॉज यू कांट इवन अलाउ देम टू पुट अप अ टेंट. इफ यू कांट डू एनीथिंग एटलीस्ट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग.
13: Padmaja ji, I think you answered the question yourself that why NSU are not marching in Jharkhand, because there is our government and we are taking the matter seriously, and like Bharatiya Janata Party who did not listen to the voices of students, protest is a democratic right of everyone and students are citizen first and they have a very right to protest. And I think Rahul Gandhi has become the voice of youth. He has awakened the youth to rise every issue in the country, and it doesn't matter whether the state belongs to Congress or BJP, it is student who's raising the concern and those concerns should be addressed. I totally second that. The larger point here is we need to understand, Padmaja ji, also understand that how BJP has treated the students, how did they lathi charge the students, how did they treated the students, they used pellet guns, they used whatnot, and now Modi ji is forgiving the student. Who should be getting the forgiveness? It should be the Modi ji who should be saying sorry.
8: Mr. Mishra, right now the people who are on the streets, right now, is there any student on the streets in Patna? No. Is there any student on the streets in Delhi? No. Is there any student on the streets in Bhopal? No. Where are the students on the streets? Is there any student on the street in Prayagraj? Why is your Chhatro ki goonj headed to Prayagraj on the 8th? Why aren't they headed to Ranchi? You go to Ranchi, you hear the Chhatro ki goonj in Ranchi on tomorrow.
13: Padmaja ji, I in my starting statement itself that I said that there's a responsible government in Jharkhand and they are taking a necessary steps so that student protest is not required. Having said that, we are seeking the accountability from the every government where students are protesting. And I was trying to raise one more concern here, which allow me to raise, that media is also being very selective. When students were protesting in Jantar Mantar, media was busy trying to find out a foreign angle, foreign funding angle. When they are protesting at Jharkhand, I don't think media is trying to find any foreign
8: angle. Sir, nobody is finding any foreign angle. And if you must draw that comparison, let me also remind you that these children in Ranchi are sitting there peacefully. They are not pelting stones, and I'm not saying that students were pelting stones. Those students were overtaken by criminal elements. These young men and women in Ranchi are not allowing any criminal elements on their stage or any political elements also on their stage. But let me bring in Pradeep Bhandari, because Pradeep Bhandari, if you think that you are going to capitalize on what is happening in Ranchi, listen to these two young men. Rajesh and Ankit keh rahe hain, hame nahi chahiye bhai koi rajneeti. Hum yahan rajneeti ke liye nahi aaye, hum nyay ke liye aaye hain. To yahan pe aapki rajneeti roti nahin sik sakti.
15: हमें यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकनी भी नहीं है पद्मजा जी, पर हम यहाँ पे न्याय की बात कर रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं उनकी आवाज झारखंड के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी कब सुनेंगे. राहुल गांधी इज द टाइम टू लॉन्च अ बुक बट नॉट कॉल हिज चीफ मिनिस्टर एंड से दैट अग्री टू द डिमांड्स. दे नॉट इवन आस्किंग फॉर अ रेजिग्नेशन, दे आर ओनली आस्किंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सीबीआई प्रोब. व्हाट आर दे फियरिंग फॉर अ सीबीआई प्रोब जस्ट बिकॉज ऑफ सम टॉप नेता ऑफ द कांग्रेस और जेएमएम विल बी कॉट. राहुल गांधी इज द टाइम टू गो टू उत्तर प्रदेश बट ही डज नॉट हैव अ टाइम टू गो टू झारखंड. And yes, is it just because they belong to the people of Bharat? They are sons and of laborers, kisan, mazdoor ke bete hain. Isliye yahan pe koi five star actress nahi aayega. Just because they do not pay 10 lakh rupees of rent in GK1, just because they do not have quote unquote Bollywood celebrities coming and celebrating and influencing and amplifying their content. That is why the Congress party will not come, or the Congress has not got funding for foreign quote unquote Akash. That's why he's not going to Jharkhand. I'm appalled that Ashwini Mishra on the show has gone.

0: अंदर, वो भीगा हुआ है, किसान का बच्चा है, वो किसान का बच्चा और जीके बैंक का बच्चा नहीं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। इन्फ्लुएंसर रील नहीं डाल सकता, वो वहां पे हिंदुओं के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, भारत के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, मोदी के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, राजनीतिकरण नहीं कर रहा, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट, आई कंप्लीटली अग्री, वी डू नॉट वांट एनीथिंग, बट व्हाट अपॉल्स मी एज एन इंडियन एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ, दैट दीस हिपोक्रिटिकल कांग्रेसीज आर नॉट एम्प्लॉइंग द मॉरल स्टैंडर्ड्स इन द स्टेट, दे आर ओनली आस्किंग फॉर कैंसिलेशन, दे आर नॉट इवन आस्किंग फॉर अ पॉलिटिकल रेजिग्नेशन एंड अ सीबीआई प्रोब, इट्स अ लिमिटेड डिमांड।
1: महुआ माझी, महुआ माझी, महुआ माझी, रिस्पॉन्ड
2: जी। देखिए ऐसा है कि आज जिस तरह से पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको पता होगा अभी एक हफ्ता पहले,
1: एक सेकंड, राजेश और अंकित कुछ दिखा रहे हैं, राजेश और अंकित कुछ दिखा रहे हैं, महुआ जी बिफोर यू रिस्पॉन्ड, राजेश और अंकित कुछ बोल रहे हैं, बोलिए राजेश।
3: पानी भरा हुआ इसमें, पूरे मैदान में पानी भरा हुआ, मैम पूरे मैदान में पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा वाला जगह जहाँ हम लोग बैठे हुए एकदम जमीन पे बैठे हुए, मैम देख सकते हैं, ये पूरा देख रहे हैं मैम, देख पा रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ मैम, पूरा पानी भरा हुआ है, और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है मैम, रात में तो खूब बारिश होती है मैम, अभी कुछ देर के लिए बारिश छुटी हुई है, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी मैम, देख सकते पूरा मैदान में पानी भरा हुआ मैम, अब देख सकते उस तरह से छात्र भी उधर हर जगह पे पानी भरा हुआ है मैम।
1: महुआ जी कम से कम इनके लिए एक यहाँ पर टेंट तो लगवा दीजिए, ऐसा जंतर मंतर पे सब सुविधा थी, खाना था, सब कुछ था, बहुत अच्छी बात है, फंडामेंटल राइट इज प्रोटेस्टिंग एज लॉन्ग एज इट्स पीसफुल।
2: परिस्थिति में है, मैं कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इनके साथ न्याय करेंगे,
0: कैसे न्याय करेंगी मैडम, मुख्यमंत्री को टेंट लगाने के लिए वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है मैडम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी थी हमने एक्शन लिया, यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री के साथ मीडिया ने सवाल पूछा, वो हंस रहे बोल रहे करेंगे,
2: न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि भविष्य में कभी भी उनका पेपर
0: आर दे पेंटिंग स्टोन्स, नो आर दे बीटिंग अ पुलिसमैन, नो आर दे आस्किंग फॉर अ भारतीय जनता पार्टी और सम अदर पर्सन टू कम देयर, नो देन माय पॉइंट इज व्हाई आर स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस जस्ट बिकॉज इट इज टिरनी ऑफ कन्वीनियंस ऑन दिस लॉबी, जस्ट बिकॉज दे आर पीपल हु बिलोंग टू विलेजेस ऑफ द कंट्री एंड नॉट लाइक कोट एंड कोट लैटिन प्लेसेस वेयर दीस ऑपोजिशन पीपल कैन कम,
4: जो व्यक्ति जितना भी एग्जाम पास किया है, हमारे छात्रों की मांग है, हम सभी की मांग है, एकदम तत्काल रद्द होना चाहिए, ये न्याय होगा, हमारी मांग है कि जो भी दोषी है उन पर निष्पक्ष जांच करके उनकी सजा होनी चाहिए, हमारा न्याय होगा, क्योंकि पेपर लीक यहाँ पर एक आज की समस्या नहीं है, जड़ जमा चुका है, इससे पहले भी हम लोग जेएसएससी सीजी और जेपीएससी में कई आंदोलन करके रद्द करवाते रहे हैं एग्जाम, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया, सोल्यूशन तब होगा चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो मंत्री स्तर के व्यक्ति हो कोई भी हो, यदि आप चाहते हैं निष्पक्ष न्याय हो,
1: and it's a very simple demand that these young men and women have been raising, there should be a central investigation, a CBI investigation, and more importantly, this is not just about a paper leak, it is about allegations that jobs are being sold, do you realize that you've got the futures of these young men and women which are at stake over here. I also want to bring in Devendranath Mehto, he's a student leader who's also parallelly been sitting on a hunger strike now. Devendra ji hamare sath is waqt, Devendra जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रिमेंबर द स्टूडेंट सेड वी डू नॉट वॉन्ट टू हैव एनी पोलिटिकल लिंकेजेस, सो दे हैव रिमूव देयर स्टेज, दे आर सिटिंग सेपरेटली फ्रॉम देवेंद्रनाथ मेहतो, दीज पैरेलल एजिटेशंस कंप्लीटली फॉरगॉटन, कंप्लीटली अनसीन बिकॉज ऑफ द टिरनी ऑफ डिस्टेंस। देवेंद्रनाथ जी आप क्यों अनशन पर हैं, आपकी मांग क्या है?
5: 2 अगस्त से हम जल और अन्न को त्याग दिया है, क्योंकि 21 जुलाई से जो जांच हो रही है उसे बहुत गड़बड़ी पाई गई, एल्थ अंत का रिजाइन भी हुआ, कारण लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सरकार के तरफ से जो कार्रवाई अभी तक होना चाहिए सब नहीं हो पाया। हम लोग का डिमांड है जेपीएससी जेएसएससी पर कंप्लीट रिफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और रांची का प्रोटेस्ट में अंतर है, वो मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस नीट का एग्जाम का पेपर लीक था, मैं 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी में कई बार पेपर लीक हो चुकी है, और कई कई एग्जाम का ओएमआर घर से भर करके जमा कर रहे हैं या पूर्णांक से भी ज़्यादा मार्क्स दे करके मेरिट लिस्ट में लाया जा रहा है, क्वालिफाइंग पेपर को भी मेरिट में ऐड करके मैंने पूरा धांधली चल रहा है, जितना हो सके पूरा व्यवस्था ही बदलने की आवश्यकता है, यहाँ पूरा व्यवस्था सड़ गया, चौपट हो गया है, तो इसीलिए

0: हम लोग हंगर स्ट्राइक में आ गए हैं और आज दिसंबर उसी मुस्त लिखा है पुण्य तिथि है और दिसंबर शिव सरिन अलग झारखंड राज्य के लिए पूरा जीवन भर संघर्ष किया, गरीब के लिए, न्याय के लिए आंदोलन किया। अगर वो गुरु जी आज होते हम लोग के बीच तो हम लोग के साथ आंदोलन कर रहे होते हैं। आज उनके पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और हम लोग उनके पिताजी के रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी को आदर्श मानते हैं, अपने पिताजी के मार्ग पर चलते हैं, तो कृपया हमारे बातों को सुने, हमारे मांगों को पूरी करें। ये मेरी आवाज नहीं है, ये झारखंड के लाखों युवाओं की आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये उनकी आवाज है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और इच्छा रखते हैं ईमानदारी से परीक्षा हो। ये आवाज में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कोई पिताओं का पसीना है, कोई अभिभावक का संघर्ष है। ये लाखों लोगों की आवाज है।
1: देवेंद्र जी, आप कब तक इस अनशन पे रहेंगे? ये क्योंकि अभी तक कोई सरकार से अगर नहीं आया है, अगर अगला एक हफ्ता दो हफ्ता कोई नहीं आया, तो फिर आप कब तक रहेंगे?
0: जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, अगर नहीं आएंगे बात करने, तो मैं जो चादर ओढ़ा हूँ सफेद कलर का, ये मेरा सफेद कलर का चादर क्यों न कफन में बदल जाए। लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मेरा झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इतिहास रहा है, तभी भी मैं अधूरा में नहीं छोड़ा हूँ। चाहे सीजीएल को भी हमने रद्द कराया था और लाठी हम पर बरसी थी, 35 FIR है सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हमारा, और हम लोग जेल भी जा चुके हैं। तो अधूरा रास्ता में नहीं छोड़ूंगा, चाहे क्यों नहीं है मेरा सफ़ेद चादर कफन में बदल जाए। आज मेरा हालत बहुत बुरी है, अभी मेरा सलाइन चढ़ रहा है, आप लाइव में देख रहे हैं, लाइव में ही मेरा सलाइन अभी भी चढ़ रहा है और मेरा पूरा बदन में दर्द है, शुगर और बीपी बहुत डाउन हो चुका है। डॉक्टर बोला सलाइन नहीं लोगे तो एडमिट करेंगे, तो हम एडमिट होने से अच्छा सोचे आंदोलन स्थल पर ही सलाइन लेना अच्छा रहेगा, और हमने सलाइन को एक्सेप्ट किया है। बाकी जल और अन्न दोनों को त्याग किया है अभी।
1: त्रिवेंद्र नाथ जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप झारखंड के सोनम वांगचुक हैं। अगर सोनम वांगचुक खुद आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? या जो जो सोनम वांगचुक के साथ एक मंच पर आए थे, उनको आप क्या कहेंगे?
0: जी बिल्कुल, सोनम वांगचुक सर का प्रेरणा से हमने ये बड़ा कदम उठाए हैं, क्योंकि हमको लगा सोनम वांगचुक सर का हंगर स्ट्राइक से अगर केंद्र की सरकार घुटने टेक सकती है, तो हम छात्र लोग को न्याय क्यों नहीं मिल सकता है। और सोनम सर से मेरा एक आग्रह होगा, अगर ये वीडियो हम तक पहुंच रही है, तो कि हम सोनम सर आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है, देश का केंद्र बिंदु बना है यह प्रोटेस्ट। मेरा हालत भी बहुत नाजुक होती जा रही है, सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है, तो कृपया करके वीडियो कॉल में और हो सके तो आप हमारे बीच आइए। आप देश के छात्रों को न्याय दिलाए हैं, एक बार पूरा झारखंड के लाखों युवा आपसे न्याय दिलाने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, मैं तो आपसे आग्रह कर रहे हैं।
1: एक छोटा सा आग्रह है बस, आके बात तो सुनिए।
0: आप लोग और आप लोग पूरा चैनल के सभी टीम से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी पहल करिए और सोनू मानचंद सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए। हम पूरा आप लोग का चैनल के टीम से हम आग्रह करते हैं।
1: महुआ जी, एक मुख्यमंत्री गुरु जी की आज जी मौके पे आज ये सब बच्चे जो महतो हैं, देवेंद्र नाथ जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार आकर के मिल तो सकते हैं, बात तो सुन सकते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं, ये जितने भी छात्रों की मांगे हैं, आपकी मांगे हैं, उस पर ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हर दोषी को वो सजा दिलाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई, जांच हो रही है, और इस बार वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के मूड भी नहीं है। और जो गलतियां पिछली सरकारों में हुई है, या वो जो घुन लगा हुआ था, वो सिंडिकेट जो अभी भी वो अंदर अंदर कार्य कर रहा होगा, उस सिंडिकेट को ख़त्म करके ही वो दम लेंगे। और मैंने तो केंद्र सरकार से भी ये आग्रह किया था राज्यसभा में कि जिस तरह से आज गुजरात में कहिए, उड़ीसा में कहिए, दिल्ली में कहिए, पूरे देश में कहिए या झारखंड में कहिए, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, इसके लिए केंद्र सरकार कोई कठिन कानून बनाए जो कि पूरे देश में लागू हो और इस तरह की हरकत करके करिए मैडम भविष्य बर्बाद करने के लिए।
2: झारखंड का युवा देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा, ये किसान का बेटा वहां पे बैठा है, आपके आंखों से आंसू नहीं आ रहे, वहां पे मजदूर का बेटा है, आपके आंखों से आंसू नहीं आ रहे, यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब करने का प्रयास कर रही है। आप लोग सब गरीब लोगों के बच्चे और बड़े बड़े अमीरों के बच्चे नहीं, इसलिए आपके मुंह से खान
1: नहीं। मैंने भी पीएचडी किया है,
2: आपने पीएचडी और एमबीए कुछ नहीं, जहाँ बच्चा न्याय मांग रहा है वो एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की बात कर रहा है, सीबीआई प्रोब की बात कर रहा है,
1: बिल्कुल न्याय मिल रहा है, न्याय किया जा रहा है उनके साथ,
2: होगी सीबीआई प्रोब,
1: आप बात को गलत दिशा में मत छोड़िए,
2: वो भाजपा का बच्चा नहीं है, वो कोई बड़े इंसान का बच्चा नहीं है, आप लोगों के जेएमएम का बच्चा नहीं है, वो
1: हर तरह से उन पर,
2: कब होगी सीबीआई प्रोब, कब होगा एग्जामिनेशन कैंसिलेशन, वो एमआरसी शीट जो है वो
1: बेटी लगा दिया गया है, उसमें
2: खरीद फरोख्त हो रही है, वो 10-10 साल से मेहनत करते हैं डीएसपी बनने के लिए, कुछ बनने के लिए
1: ला रही है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी भविष्य में।
2: This is the exact difference between them. This is how they treat the people of the country. But they have zero empathy. They have zero concern. They are asking for basic demands out there. They have even kept the BJP and other parties away from their protest.
1: Still, माननीय मुख्यमंत्री जी,
2: मैडम, they are sons of farmers. They are daughters of farmers and poor laborers. The people of Jharkhand and the youth of Jharkhand and the entire country seeking what has Rahul Gandhi silence and your complicity done.
1: Okay, let me bring in Ankit and Rajesh back. Okay, you know what will happen is the more politicians speak, there will be more of tutu, meme and finger pointing. अंकित और राजेश, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज जानते भी नहीं है, सच बात यह है कि हमने भी जब पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि जो जंतर मंतर में डिमांड थी और जो झारखंड में डिमांड है वो बिल्कुल ही अलग है। वहां पर लोग ये हैं जो कि कह रहे हैं कि नौकरियां बिक रही हैं, यहाँ पेपर लीक का मसला नहीं है। पहले तो लोगों को बताइए कि हुआ क्या है कि आपके 99.314% मार्क भी आते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि झारखंड में किसी को नौकरी नहीं मिलती है इतना मार्क आने के बाद?
3: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है। और झारखंड में पेपर लीक नहीं है, झारखंड में सीट बेचा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सरकार की जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा उजागर किया गया है। तो यहाँ पर तो भविष्य बेचा जा रहा है, मेहनत बेचा जा रहा है, संघर्ष बेचा जा रहा है। तो माननीय मैडम से हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, नो डाउट मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारी जो मांग है, पहले रद्द कीजिए फिर सीबीआई जांच कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, एकदम क्लियर कट सीट बेचा जा रहा है। मैम
4: जी, इसमें जानते हैं मैम, टोटल 120 क्वेश्चन मैच किया था आउट ऑफ, जैसे मैं समझा देता हूँ, तीन पेपर होते, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। पेपर वन में इंग्लिश एंड हिंदी था क्वालिफाइंग, पेपर टू लैंग्वेज पेपर था जो ओरिजिनल पेपर था, और पेपर थ्री जो जीएस पेपर था उसमें 150% का एग्जाम हुआ, उसमें से 120 क्वेश्चन मिले एकदम हुबहू, जो रटवाया गया तो वही मिला, यानी 80% क्वेश्चन मिला। और जानते हैं मैम सीआईडी ने क्या बोल दिया, क्योंकि पहले सीआईडी की टीम ने सही जांच की थी और उन्होंने बताया कि 120 क्वेश्चन मिला आउट ऑफ 150, यानी 80% क्वेश्चन, और जब जैसे सीआईडी टीम को बदला गया उन्होंने बोल दिया फ्यू क्वेश्चन। मैम मैं पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ पे सांसद महोदया भी बैठी हुई है, मैम आप बता दीजिए क्या 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से फ्यू क्वेश्चन होते हैं? इज दिस फ्यू क्वेश्चन? इज दिस फ्यू क्वेश्चन? और ये फ्यू क्वेश्चन के हवाले देकर के
1: अगर ये सही है तो दे आर क्लियरली सेइंग कि सीआईडी की जांच से वो संतुष्ट नहीं है, जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, उनको नहीं उम्मीद है कि इससे न्याय होगा। दैट्स व्हाई वी आर एट राइट, न्याय, जस्टिस। मऊआ जी, अगर ऐसा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कोई स्टेप लेंगे। नहीं जी, अगर ऐसा है आपको संतुष्टि नहीं है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और वो आप लोग जो चाहते हैं वही
2: सब कार्यक्रम होंगे, उसके बाद लेंगे। द कंट्री इज वॉचिंग, how the poor kids out there are asking for a very minimal demand, which is not even political, Padmaja ji. It is a basic demand for justice. And look at the hypocrisy of Rahul Gandhi and the Congress and the JMS.

0: which is governing there, that leave apart even seeking to the students. They've not even met the students once, not even provided them basic facilities where they can even protest. Neither have they given cognizance to them. And the Congress spokesperson here is looking at quote unquote Videshi angle. Now, how hypocritical and how much do you hate the people of the country? How much do you hate the poor people of this country? Just because they are not a part of your ecosystem, you will not even listen, Ashwini. Even Hitler would have died and looking at you. You are even more hypocritical than Hitler. Even Nero would be died listening and looking at you. You have crossed that limit, my dear.
1: Ashwini Mishra, by all means, you want to corner the BJP inside parliament, please be free to do it. You want to carry out marches in BJP-ruled states, by all means do it. Just send one representative to meet these kids in Jharkhand as well, because you're in government. You would actually be in a position to change something. You don't have to do marches. You can fix it.
2: If I have not heard the Chief Minister of Jharkhand, he's spoken about the issue. And coming from Pradeep Bhandari, it is the height of shame that he is taking moral ground on student
0: protest in Lakhan's Delhi. And you are speaking about Chhatra ko nyay nahi milega, to system milaoge. Jharkhand mein Chhatra ko nyay nahi mil raha hai.
2: And I have question
0: for you. Go to your gym. Rahul can go to a gym. Rahul can go to a 5-star restaurant. Rahul can launch a book. Rahul can insult sadhus. Rahul can have his ecosystem go to Jantar Mantar. You know, word cockroach there has become an abuse. The word cockroach today has become an abuse because of discredited individuals like them.
2: Our government is not selective.
0: Are your government, leave, your government is not even there. God knows where is your government. Even if government exists, that only people don't know in Jharkhand.
2: How CBI
0: are trying to even
1: let Ashwini finish.
2: Investigate the issue.
3: Ma'am.
1: Yes, go on, Mr. Mishra. Go on. Finish your point.
2: Yeah, so point is, BJP should not speak about the moral values about the student when you have lathi charge.
1: Arre sir, let the BJP not speak. Answer just these children who are sitting there. Answer Ankit. You don't owe the BJP nothing. But you at least owe an answer to the people who have voted for you. Presumably, you are in government because these kids would have voted for you. Ankit.
3: Ma'am, I have three parties who are in the main group in Jharkhand. I want to ask everyone, what is your responsibility? पेपर लीक होने में क्या सबकी सबका रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि ठीक हो पेपर लीक होना? क्या सबकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग जब भीग रहे हैं तो सब लोग साथ आए, हम लोगों को टेंट का प्रोवाइड कराए? राहुल गांधी वहां पे बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और तमाम तरह के चीजें चला रहे हैं, क्या वो झारखंड नहीं आ सकते हम बच्चों के साथ? क्या वो यहाँ पे गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते अपने सहयोगी गवर्नमेंट को कि बच्चों का बात को सुना जाए? लेकिन कुछ नहीं हो रहा मैम। मैं बीजेपी से भी उतना ही खपा हूँ जितना कांग्रेस और जेएमएम से हूँ। उन्होंने भी हमें ठगने का काम किया मैम। मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो फेयर सिस्टम मांग करता हूँ। आप लोग राज कीजिए। हम मना किए क्या? हमें क्या चुनाव लड़ना है क्या मैम? हमें चुनाव होना कुछ नहीं लड़ना है। बस हम लोग का जो मांग है, जेएसएससी में जितने भी गड़बड़ियां होंगी सब पे जांच कराई जाए। टीडीपीएल कंपनी ने जो भी एग्जाम कराई है सबको रद्द किया जाए। 14 जेपीएससी और 11-13 जेपीएससी को भी बढ़िया से जांच करा के उसको भी रद्द किया जाए। एकदम स्पष्ट मांग है मैम। और जब तक हमारा मांग नहीं माना जाएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है।
2: और
3: हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं। बारिश कुछ नहीं कर पाएगी हम लोगों को।
4: एक शब्द नहीं
2: निकलेगा।
3: सीबीआई और ईडी से करवाई जांच, पता चल जाएगा कौन कौन इन्वॉल्व है।
1: ओके, 30 सेकंड्स मिस्टर मिश्रा, देन प्रदीप भंडारी, आपसे भी उतने ही खपाए। अश्विनी मिश्रा पहले आप बताइए, फिर प्रदीप भंडारी।
2: पद्मजा जी, चीफ मिनिस्टर हैज गिवन द एश्योरेंस अबाउट द इंक्वायरी, बेस्ड ऑन द इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, वट एवर द रिजल्ट, वट विल बी द आउटकम, दे विल कैंसिल द एग्जाम इफ रिक्वायर्ड, इफ इट कम्स अंडर द इंक्वायरी। बट आई डोंट थिंक द सीबीआई एंड ईडी इज अ जेन्युइन डिमांड, बिकॉज सीबीआई एंड ईडी हैज बीन यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल वेंडेटा बाय द बीजेपी, एंड वी हैव सीन हाउ दे हैव जेल्ड द चीफ मिनिस्टर विदाउट एक्चुअली कन्विक्टिंग ऑन एनी केस।
1: अरे आप अभी ये लड़कों को आप कह रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड नहीं है, अब आप उनको बताएंगे कि उनको क्या डिमांड रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? अंकित बताइए।
2: नॉट ट्रस्ट, यू कैन नॉट ट्रस्ट।
3: सर आप बता रहे हैं हमें सीबीआई और ईडी, सुनिए
1: एक एक करके प्लीज, लेट्स नॉट शाउट ओवर ईच अदर। एक सेकेंड, कैन आई जस्ट हैव अंकित स्पीकिंग? बताइए अंकित, सीबीआई ही क्यों? सीआईडी की जांच चली रही है ना, क्या प्रॉब्लम है?
3: हाँ बताता हूँ मैं मैम। सीआईडी से हम लोग पूर्वाग्रहित नहीं थे कि सीआईडी अच्छा जांच नहीं कर सकती है। सीआईडी ने अपना मुंह खुद काला किए, खुद अपना ट्रस्ट को ब्रिज किए उन्होंने। जब उन्होंने जेएसएससी सीजीएल के मामले में जांच किया तो उनके जांच को दबा दिया गया, क्योंकि सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली है, उसके अंडर आने वाली है।
5: तो इस पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होती है मैम, जिसकी वजह से सीआईडी अच्छे से अपना जांच तो करना चाहती है लेकिन जांच नहीं कर पाती है, और इसका सारा काला चिट्ठा दिख गया।

0: सीजीएल में इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सीआईडी जांच ना करे और सीबीआई और ईडी जांच करे, और इसमें जब भी तकलीफ हो तो मैं कह रहा हूँ फाइव सिटिंग जज, कितना फाइव सिटिंग जज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो और झारखंड हाईकोर्ट के भी जज हो, उनके निगरानी में जांच करवाया जाए, जो भी जांच हो उसका पर डे पता चलना चाहिए हम लोगों को अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
1: क्योंकि मैं एक मंत्री हैं, एक एमएलए हैं, उनकी बात सुन रही थी अभी दिन में, दीपिका पांडे जी शायद उनका नाम है, वो कह रही थी कि सीबीआई में भी क्या ही हो जाता है, सीबीआई अगर जो सेंट्रल एजेंसी है वो जांच करेगी तो उस पर इतना भरोसा क्यों है आपको अंकित, हो सकता है वो जांच भी खराब हो जाए।
0: मैम उसके लिए हम लोग फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ सीबीआई का डिमांड नहीं कर रहे हैं मैम, फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं, जिसमें 90 डे के अंदर हम लोग का सारा चीज उसमें क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं होता हम लोग फिर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे।
2: मैडम, वी ब्रॉट अ लॉ फॉर अ फास्ट ट्रैक कोर्ट इन 3 months, द एजुकेशन मिनिस्टर टुक मॉरल अकाउंटेबिलिटी एंड रिजाइंड. Every action was taken in a time brown probe. There, the protesters are not even asking for a resignation, and you have the Congress spokesperson here even trying to discredit the post protesters just because it does not belong to his lobby. And I question Rahul Gandhi, who speaks about the students, why is he apathetic to the students in Jharkhand just because they are laborers, son? They belong to SC community, OBC community, and poor people's community. How much do they hate the people of the country? This man, Mishra, Ashwini Mishra, comes on the studios and saying BJP. Congress, yeah. Not once is he saying that Rahul Gandhi will speak up on the issue and give a call to Jharkhand Chief Minister Hemant Soren and ask for a CBI probe. If you don't trust the system, then where is the trust in the country? Not in the Supreme Court, not in the Supreme Court monitored probe. Who is the trust? Only in the Congress party's ecosystem. What? And you don't have a foreign money, that's why Jharkhand is not going to go.
1: And Ashwini Mishra, I genuinely have only one question. And I think the Chhatron Ki Goonj is an excellent initiative. You want to harness the youth power. You want to have that listening post where all the youth can come and express their issues, express their fears, their hopes and dreams. Why can't the Chhatron Ki Goonj head to Ranchi next? What is so pressing in Prayagraj? I genuinely want to understand on the 8th of this month, what is happening in Prayagraj instead of Ranchi?
3: Are you not aware the number of paper leaks happened in Uttar Pradesh, Padmaja ji? Are you not aware of the exam?
1: Are you not aware of the jobs being sold in Ranchi?
3: So, Padmaja ji, as my chief minister from Ranchi already spoken that they are investigating the issue. If they have a problem with one agency,
1: अरे आप जाकर के investigation तो UP में भी हो रहा है ना, पर आप लोगों की बात सुनना चाहते हैं ना, बच्चों की बात सुनने के लिए आप छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तो सुनिए उनकी बात जाके।
0: अगर CID से ही जांच करानी है तो फाइव
2: जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा वहाँ झारखंड नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का सिंहासन जो है ना विपक्ष का वो भी हिलने वाला और नीचे चले जाओगे, इतना ज्यादा घमंड आ चुका है। शर्म आनी चाहिए, देश के नागरिकों के, देश के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते हो, ये तुम्हारी सच्चाई है। जॉब नहीं मिलेगा तो सिस्टम मिलेगा, हाँ झारखंड में मिलेगा, हाँ हर जाके हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, शर्म आनी चाहिए। पॉलिटिकल बिकरिंग शो कर दो, फोटो शो कर दो, यही है कांग्रेस पार्टी है। अरे तुम्हारा तुम सरकार में झारखंड में राहुल गांधी बोलो 10 दिन विदेशी दौरा छोड़ दे, प्रयागराज परसों चला जाए, परसों चले जाए, वहां राजनीति बाद में कर ले, बच्चों से मिले, बच्चों से मिलो मेरे भाई, वहाँ पे वो किसान का बेटा है, वहाँ पे गरीब का बच्चा है, वहाँ पे वो आपके सिस्टम का नहीं है जो इंस्टाग्राम पे आपकी रील को लाइक कर दे, शेयर कर दे, इसलिए नहीं जा रहे क्या? पैसा नहीं मिला बाहर से इसलिए नहीं जा रहे, पैसा नहीं मिला इसलिए बाहर से, मैसेज नहीं है बाहर से जाने के लिए, कितने बड़े शर्म मेरे भाई, आप लोग इतना इस देश से नफरत करते हो जितना कोई नहीं नफरत करता है। आप 100 लोग दिल्ली में बैठकर अपने लोगों के आजू बाजू में रहना चाहते हो और झारखंड नहीं जाना चाहते। अश्विनी आप तो कम से कम एक, आप अश्विनी मिश्रा मुझे लगता है आप तो टीयर 2 टाउन से आते हो, वहाँ असली भारत है, वो दाल चावल खा रहे हो,
3: अपनी बात करो।
2: अरे मेरी बात करी, मेरे एजुकेशन में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुए, अकाउंटेबिलिटी भी, सब गिरफ्तार हुए, पेपर वापस से 11 लाख 12 लाख 22 लाख बच्चों ने दिया, पेपर भी वापस से हो गया, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। वह किसान का बच्चा सड़क पर पड़ रहा है, न्याय मांग रहा है, वो बीमार हो रहा है, पानी में भीग रहा है, शर्म आनी चाहिए।
1: When you raise issues, and I'm not saying that issues should not be raised, when you raise issues, the same finger can be pointed back at you, saying you were quiet. For the longest time, nobody in the government engaged with Sonam Wangchuk. Nobody engaged with the CJP. You thought that this is something that would pass. Same thing even Hemant Soren is doing.

0: होपिंग दैट अभी इन्वेस्टिगेशन चली रहा है. आपने क्या बोला कि भाई हमने रीनीट करा दिया, हमने 13 लोगों को पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. वही हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं कि हमने फलाना लोगों को पकड़ लिया, हमने सीआईडी का प्रोब करा लिया. ऑल ऑफ दिस विल आल्सो ब्लो.
1: आप सोनम वांगचुक से समझ लीजिए, पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं. आज सोनम वांगचुक की राय क्या है, ये तो सोनम वांगचुक तक तो नहीं छोड़ रहे. हमने चलिए बाद में प्रोटेंगेज किया, हमने किया तो सही, हमने एक्शन तो लिया. अब तो ये सोनम वांगचुक तक को नहीं छोड़ रहे और इनके कोट अनकोट कॉकरोचेस तो इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि इट इज बिकम अब्यूज बिकॉज दैट कॉकरोच एवरीबॉडी हैज गॉट अ टाइफाइड एंड नॉट अ सिंगल पर्सन इज गोइंग देयर जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम फार्मर्स सर. उनको पैसा वहां से नहीं आया.
0: Okay.
1: How much hypocritical can we be in this country?
0: I want to again bring it back to Rajesh and Ankit. Rajesh, मुझे ये बताइए कि अभी अगर आपको जो लोग, और आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे थे हजारों लाखों मिलियन मिलियन 150 मिलियन व्यूज जा रहे हैं एक एक रील के, जिन लोगों ने वो बनाया, जिन लोगों ने वो देखा, अगर इस वक्त वो आपको देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे रांची में बैठ के?
2: बिल्कुल मैडम, सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं जो लोग हमारे इस मुहिम को नेशनलाइज किए. आप तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि झारखंड में शायद ही कभी इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के नेशनल मीडिया कवर करती थी. पहली दफा है छात्रों की आवाज नेशनल मीडिया बनी. मैं सभी से कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से कहना चाहूंगा कि यदि हम लोग देश को भारत का सपना जो है हमारा वो पूरा करना है तो हम लोगों को यहाँ लड़ना छोड़ना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा. मैडम बोल रही थी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं माननीय से भी पूछना चाहूंगा, अभय तिवारी जो है मैडम वो जेएसएससी सीजीएल का मास्टर माइंड है, पूरा जांच हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन मास्टरमाइंड को सीआईडी नहीं गिरफ्तार कर.
0: दे डू नॉट ट्रस्ट योर प्रूफ मैम. यू नो आइदर यू कैन कीप सेइंग द सेम प्लैटिट्यूड्स ओवर एंड ओवर, जांच चल रही है न्याय होगा, हम सुन रहे हैं न्याय होगा, वहां बच्चे बैठ के कह रहे हैं हमें नहीं भरोसा है इस जांच के ऊपर, हमें नहीं भरोसा है कि न्याय होगा. व्हाई सच एन अवर्जन टू अ सीबीआई प्रोब?
3: देखिए ये सचमुच वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में और दूसरे राज्यों में होती रही हैं, इसलिए वो किसी को विश्वास नहीं कर पा रहा है. मैं उनका दर्द समझती हूँ. देखिए एक हफ्ता पहले गुजरात में भी यही पेपर लीक हुआ, वहाँ पे तो हमारी सरकार नहीं थी. अभी उड़ीसा में हुआ, वहाँ भी हमारी सरकार नहीं थी, दिल्ली में हुआ. तो ये जो है ना, यहाँ पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है. हम लोग को सब लोग मिलकर, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबको मिलके अब ये करना है कि हमें कैसे छात्रों के साथ हम न्याय, छात्रों को न्याय दिलाए, ये सबसे ज़रूरी है. और हम लोग इसमें बिल्कुल तटस्थ हैं, कोई तरह का पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही चाह रहे. दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको रिजल्ट दें, वो चाह रहे हैं कि उनको आश्वासन देकर सिर्फ नहीं आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बीमारी, ये कीड़ा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए.
0: आई विल अगेन रिपीट माई क्वेश्चन. जिन जिन बच्चों से मैंने बात की है ओवर द लास्ट 3 days, दे हैव सेड ओनली वन थिंग, वी डू नॉट ट्रस्ट द सीआईडी इंक्वायरी. We think a CBI investigation would be more trustworthy.
3: CID जांच में पूरा नजर है कि किसी के.
0: मैम CBI इंक्वायरी से इतनी एलर्जी क्यों है? क्या आपको लगता है कि CBI इंक्वायरी में आपके साथ न्याय नहीं होगा? क्या वो बायस्ड होगी? Why are you so averse to a CBI inquiry?
3: नहीं, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है.
0: तो आप मान कर लीजिए ना,
3: तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया होती है कि जब सीआईडी जांच कर रही है तो उसके बाद ही सीबीआई जांच हो सकती है, तो जरूर ये प्रक्रिया भी कर दी जाएगी. अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से होगा.
0: ओके, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स.
1: लॉ टेल्स यू दैट अ सीबीआई प्रोब कैन बी ऑर्डर्ड इवन व्हेन अ सीआईडी प्रोब इज ऑर्डर्ड इफ द गवर्नमेंट आस्क्स द सेंटर टू डू सो, एंड इफ नॉट इन द गवर्नमेंट द कोर्ट्स कैन ऑल्सो ऑर्डर. आई विल कम टू द फंडामेंटल पॉइंट. पद्मजा जी, दे आर नॉट बीजेपी वोटर्स आउट देयर, दे आर स्टूडेंट्स एंड यूथ एंड फ्यूचर of Jharkhand. They are selling the future of Jharkhand. आप future of Jharkhand को गिरवी रख रहे हो अपनी राजनीति के लिए. हमको तो जो moral accountability लेनी थी, हम तो law तक ले आए. What have you done? Nothing. Seed बेची जा रही है. Leak तो छोड़िए, seed बेची जा रही है. जिसके 40 नंबर आ रहे हैं उसको आप दे रहे हो, पैसा दे के चल रहा है. इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता. और राहुल गांधी शांत कर बोले राजनीति मत करो. राजनीति नहीं करे, छात्र की बात कर रहे हैं यहां पे.
0: महुआ जी,
3: देखिए ऐसा है ना कि सीट बेची जा रही है नहीं बेची जा रही है, अगर पूरे देश में भ्रष्टाचार है तो ये बहुत गलत है. हम लोग इसका विरोध करते हैं.
1: मैडम आपके झारखंड की बात हो रही है, देश की बात आपने 30 दिन पहले कर ली, कानून दिया
3: और कार्रवाई कर सकते हैं ना. देखिए ये आज आप यहाँ पर इसके पहले 17-18 साल तक भाजपा की सरकार थी, आप इतिहास उठा के देखिए, ये घुन लगा हुआ है, मैं मानती हूँ, जिसे ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी

0: कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटा रहे हैं, ऐसे लोगों से निपट रहे हैं, और आने वाले दिन में
1: इट्स अ लेगेसी प्रॉब्लम।
0: इसके लिए पूरी
2: हमारी 5 साल की सरकार के पहले इनकी 5 साल की सरकार थी, तो क्या ये कह रही है हेमंत सोरेन पहले सरकार में थे वो भ्रष्ट थे? Is she admitting that the earlier government run by Hemant Soren was a corrupt government?
0: वो नहीं थे, वो उस समय सरकार में नहीं थे।
2: Admitting that it was a corrupt government,
0: that's fine.
2: Past is past. Please talk about present now. Please talk about what you will do for the future now. We got a law from the parliament which was our responsibility. What have you done?
0: Hemant Soren ji is doing
2: nothing, zero. Are you in the parliament? Did you meet Rahul Gandhi and ask him to speak to Hemant Soren? She is a member of parliament, right? Can you please tell me how many meetings have the member of parliament of JMM and Congress done with Rahul Gandhi on this? Has he taken out a minute to also for the people of Jharkhand and the youth of Jharkhand?
0: Every day.
2: Where, which day?
1: One at a time, please. Can you please have Mahua Maji only speaking? Yes.
0: हर दिन उनके ऑफिस में मीटिंग होती है और वहाँ पर माननीय खड़गे जी के ऑफिस में, और उसमें सब तमाम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है, और ये चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी होती है हम लोगों की, और वो लगातार इस पर आश्वासन दे रहे हैं। वो बहुत दुखी हैं और वो
2: उसको लेकर आपका नेता खेल सकता है, आपका नेता इंस्टाग्राम रील डाल सकता है, आपका नेता ये सब इंस्टाग्राम कर सकता है, वो जेंसी बच्चे के नायक नहीं बात कर सकता।
1: ठीक है अंकित, आखिरी में आप ही को बोलना चाहिए क्योंकि आप ही की आवाज पूरे देश को सुननी चाहिए। अंकित
3: मैम, स्पष्ट रूप से सांसद महोदय जी, मैं जानता हूँ कि जेएमएम के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के भी जो भी पैनल से बैठे हुए हैं, चाहे बीजेपी के बैठे हुए हैं, मैं सबसे कम्युनिटी सबको एक साथ में पहले कहना चाहता हूँ कि सर जहाँ का भी मामला हो मुझे नहीं पता है ना, ठीक है झारखंड का मामला इन भी स्टेट और कंट्री का बात कर रहे हैं, पूरा ऑल कंट्री का, अब ठीक है एक रोल लू लाया सब, एक लो लाइए, बढ़िया से काम कीजिए ताकि ये फ्यूचर हम लोगों का बर्बाद ना हो, पूरा देश का फ्यूचर बर्बाद ना हो। अब मैं आता हूँ झारखंड स्टेट से। मैम महुआ मांझी मैम, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा मैम, मैं जानता हूँ कि आपका आपका बात जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी टालेंगे नहीं, एक बार कहिए मैम जेसीसी सीजीएल को क्यों मतलब वो ईगो का प्रेस्टीज ईगो बना लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। मैम पता है हम लोग बहुत ऐसा नहीं है मैम कि हम लोग किसी पार्टी वगैरह का और भी कुछ नहीं,
0: मैं जानती हूँ,
3: पता है हेमंत सोरेन जी जेएसएससी सीजीएल को प्रेस्टीज इशू बना लिए मैम, मैं कह रहा हूँ, वो जब सब चीज जान रहे हैं कि इतना बड़ा करप्शन हुआ और वहीं से जुड़ा हुआ तार अजय अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी का आया,
0: क्योंकि डीपीएल कंपनी का
3: मैम सने करने से क्या होगा मैम, ये बारिश में देख रहे मैम इस सने से पूरा नहीं होता है मैम,
1: यू नो दीज आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल हु आर सिटिंग ऑन द स्ट्रीट्स, हु आर सिटिंग इन अ स्टेडियम under the sky and open sky in the rain asking for a very small thing, talk to us, listen to what we have to say. If you really care for Chhatro Ki Goonj, you know where to find it. Hope that people are listening. Thank you very much all gentlemen and Mahua Maji.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर
9: मसाला। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: रैना तू सतरंगा जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देख कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
3: कुछ इससे भी अनोखा
2: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
6: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
5: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
7: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: Yeah, the big story today after nearly an hour of questioning at the Sengipatti police station, Udayanidhi Stalin has been released by the police now. As he stepped out, he was greeted by a large gathering of DMK supporters who welcomed him with slogans and garlanded him. His release followed a day of political drama and high drama after he was shifted to Sengipatti amid heavy security and large crowds of party workers.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: Renatu Sataranga. Jo hona hai, wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura. Sada, sada, sada muskura. Rang, rang, rang, rang, rang, rangine, rang, rangine, re, de. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
1: Bojo paints, rang bana rahe.
2: मामी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
5: सरसों से सरसों।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: Join me, Gargi Raut, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
6: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
5: आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है
5: और
6: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
6: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
3: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
2: War struck country.
0: Hard questions.
2: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine.
1: In France. In Italy.
2: At Srinagar.
1: I am Mr.
2: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक.
6: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना.
5: थैंक यू.
6: आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा.
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे.
6: आपकी फैमिली है?
7: और
6: बच्चे हैं?
7: तीन साल.
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत.
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड.
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है.
5: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो.

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: I in France.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक.
7: बैठ सकते हैं आपके साथ? खाइए ना प्लीज. आप कहाँ से हैं?
8: हरियाणा.
7: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
8: डेढ़ महीने पे.
7: आपकी फैमिली है?
8: और
7: बच्चे हैं?
8: 3 साल.
7: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
8: बहुत.
7: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
8: श्रीनगर तक अलाउड.
7: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है.
6: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
3: So many attacks.
2: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
3: War struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine.
5: In France. In Italy.
3: At Srinagar.
5: I am Srinagar.
3: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
0: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
6: बैठ सकते आपके साथ? खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: और
6: बच्चे हैं?
7: तीन साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: if they wanted to, they could have argued in the case today. They already said they are only going to interrogate him, detain him. I think the third is the message is very clear. People, no matter where they are, what they do, they cannot, you know, do what Udayanidhi Stalin did in terms of disrespecting women. And the people of Tamil Nadu, our mothers, our sisters, our daughters, cannot be treated like this, whoever they are. So the message is out loud and clear. TVK, as a matter of fact, as soon as it came to power, did the same thing on people who have not been taken action in the past, but the complaint emphasis notice, our Chief Minister Vijay took immediate action, even in some cases for his own party men. So the message is very clear. I think there's no longer women can be disrespected, and this is patriarchal society attitude should go away. So that message has gotten clear. And he responded to the groundswelling distasteful Dravidian module politics.
1: All right, Amarikai Veeranayan, thank you very much for speaking to us. And with that, it's a wrap on this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
3: Really?
2: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
4: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi.
7: Welcome, thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on the day's biggest stories, the buck stops here. The distance between Patna and Ranchi is just a few hundred kilometers, 326 kilometers to be precise. On an ordinary day, it would take you 6 hours and 19 minutes to travel that distance. Today, the Congress's students' wing, the NSUI, carried out a protest in Patna. As they tried to march to the Chief Minister's residence, the police turned the water cannon on them. The NSUI workers grabbed this opportunity to do an impromptu little rain dance at the spot. The NSUI's Patna March was one in a series to demand justice for students. But just 6 hours 19 minutes from that Patna rain dance sat actual students camping in an open field inside a stadium in Ranchi, protesting against irregularities in entrance examinations, asking why the jobs that they deserve, that they study for, that they slog for, are being sold. But for these kids in Ranchi, there is no NSUI, there is no government, there is no listening ear. When it rains in Ranchi, for these children, it doesn't mean an opportunity to dance and frolic. It means that they will have to somehow squeeze under one plastic sheet like hundreds of others like them. Desperate but determined, all these young men and women have asked, where are those who were at Jantar Mantar? Why couldn't they make their way to Jharkhand? Why couldn't they cover that distance? The answer is simple. The Congress is taking its Chhatro Ki Goonj not to Ranchi, not even to Jharkhand, but to Prayagraj in Uttar Pradesh. This weekend, Rahul Gandhi is going to be holding his Chhatro Ki Goonj in poll-bound Uttar Pradesh. The Aam Aadmi Party is putting all its focus on its agitation. They are on the streets, they are marching. But this time it is against the E20 petrol. That is their new campaign. That is the issue that they are marching on. The Cockroach Janata Party is waiting for their brainstorming session on the 5th. After that meeting, they will decide what to do next. Whether Ranchi or Punjab is something worth their attention or not. As for the state government, they are absolutely clear. We've made the arrests. The CID is doing its job. And as for those who are sitting at the Jaipal Munda Stadium in Ranchi, they will just have to wait for the time when their pain perhaps becomes insta-worthy, when it becomes viral enough.
3: मैंने पहले भी कहा है सरकार के आंख भी हैं कान भी है संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है उसका उत्तर का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे
6: अब हेमंत जी भी हैं कार्यक्रम में आप आइए जरूर आप कार्यक्रम का हिस्सा भी बनिए और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए झारखंड सरकार इसी पे काम
8: जिस तरह से युवा जेपीएससी जेएसएससी लेकर रांची में आंदोलन कर रहे हैं इस पर क्या
9: यार बाबा का आशीर्वाद सबको लगने दो भाई बोल बम बोलो भाई
10: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do.
11: Double standards hai Congress party ka. Jharkhand mein pratyek din social media ke madhyam se hajaro lakho chhatra kis prakar se andolan mein hai, wo andolan kar rahe hain, yah hum dekh rahe hain. और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है
7: And joining us now on the show, we have Pradeep Bhandari, National Spokesperson of the BJP. From the Congress, we have Ashwini Kumar Mishra joining us. We have Rajesh and Ankit, both of them who are at the stadium in Ranchi. And my first question is to Mahua Maji, Member of Parliament of the JMM. Mahua Ji, thanks very much for speaking to us. I want to start by asking you, ek hafte se zyada ho gaya hai, ek stadium ke andar, barish mein, dhoop mein, bacche baithe hue hain. Sarkar se koi milne kyun nahi gaya unse? Why has it taken so long? People who are so proactive in Jantar Mantar, why have they become so inactive in Jharkhand?
12: देखिए हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर है माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ पर बच्चों के लिए आपने आपको पता होगा कि पुलिस की जांच हो गई गिरफ्तारी हो गई लगातार वो चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो भविष्य में कभी भी इस तरह से पेपर लीक ना हो और एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए छात्रों के हित में वो लगातार काम कर रहे हैं पिछली सरकार की तुलना में आप देख लेंगे कि किस तरह से वो रेगुलराइज कर रहे हैं मरंग गोमके स्कॉलरशिप योजना के तहत उनके विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 25 लाख तक हायर एजुकेशन के लिए सरकारी गारंटी पर लोन दिया जा रहा है अभी ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग कोटा के इंस्टीट्यूट से यहाँ पर रांची में कराया जा रहा है मेधावी छात्रों को चुनकर करीब 300 बच्चों को कोचिंग कराया जा रहा है सरकारी खर्चे पे रहना खाना सब कुछ तो वो काम कर रहे हैं उनके लिए और वो चाहते हैं कि उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं हो सब कोई
7: बहुत मिलने गई
12: हमारी सरकार और जैसे ही पता चला
7: सरकार से मिलने गया बच्चों से
12: मैं तो दिल्ली में हम हमारा पार्लियामेंट चल रहा है ना उसी को हाँ वो लोग कर रहे हैं मैं तो पार्लियामेंट में हूँ और वहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों से बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं जी
7: ये बताइए
12: राजेश और अंकित दोनों हमारे साथ हैं। आज मुख्यमंत्री ने कहा सरकार सचेत है, सरकार सब कुछ देख रही है, सरकार सब कुछ सुन रही है, न्याय होगा। अंकित, न्याय क्या है
13: जी?
12: न्याय मिला है आपको?
13: बिल्कुल
12: न्याय हो रहा है अंकित?
13: बिल्कुल न्याय होगा, न्याय यही होगा।
12: मैं तो बच्चे हमारे साथ जिनकी बात बताइए अंकित,
13: आप उठा लीजिए।
14: मैम अगर हमारे साथ न्याय हो रहा होता, अगर हम लोग न्याय हम लोगों के साथ होता तो आज हम लोग इस बारिश में क्यों भींग रहे होते? मैम देख रहे मैम, बारिश से पूरा भींगे हुए हम दोनों, बारिश हो रही है मैम, हम लोग बारिश में क्यों रहते हैं? हम लोग किसान का पुत्र है मैम, अभी पता है था, अभी धान रोपने का सीजन, हम लोग धान रोप रहे होते खेत में। लेकिन अगर न्याय हो रहा होता तो हम लोग यहाँ पे खाली मैदान में नहीं बैठे होते मैम, बारिश में नहीं भींग रहे होते। पिछले 4-5 साल से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं मैम, उसका रिजल्ट है ये। ऐसा नहीं है मैम कि अचानक से आकर के हम लोग बैठ गए धरने पे। मैम ये परेशानी एक दिन का नहीं है मैम, लगातार हम लोग परेशान हुए हैं। ये पिछले चार पांच साल इतना ज्यादा परेशान हुए मैम, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम लोगों को शौक कोई ना मैम की बारिश में भींगते रहे। हम लोग अभी घर में होते, हम लोग किसान का बेटे, हम लोग हमारे घर में खेती होता है। अभी हमें अपने घर में खेत में मजदूरी करना था, अपने माँ पिताजी को मदद करना था खेती करते समय। यहाँ पे इस बारिश में नहीं भींगना था मैम, देख रह सकते हैं, मेरा बाल देख लीजिए आप। कहाँ न्याय हो रहा है? कुछ न्याय नहीं हो रहा है। अगर न्याय होता तो JSSC CGL इतना बड़ा एग्जाम था, इतना बड़ा करप्शन हुआ इसमें, नेपाल ले जाकर के प्रश्न पढ़ाया गया और 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन जो सही पाया गया, CID की रिपोर्ट कर रही है, उस रिपोर्ट को दबा करके कोर्ट में यह बोल दिया गया कि फ्री क्वेश्चन, फ्री क्वेश्चन 120 आउट ऑफ 150 फ्री क्वेश्चन होते हैं। मैं पूछता हूँ, फ्री क्वेश्चन है ये? उस परीक्षा को एकदम सरकार ने एकदम दबाने का काम किया, जबकि वो JSSC CGL को रद्द करना चाहिए था। उसी JSSC CGL से सारा तार जुड़ा हुआ मैम, उसी से आज JPSC तक पहुंचा, समझ रहे हैं? JSSC CGL में अगर उस दिन उन चोरों को पकड़ लिया जाता, पेपर माफियाओं को पकड़ लिया जाता मैम, तो आज JPSC का ये हश्र नहीं,
15: JPSC का ये हश्र होने का जो आप देख रहे हैं। 14 JPSC लोग जितने भी हैं,
14: इस बार एग्जाम में आज धांधली हुआ है, वो MR को बाहर ला करके रंगा गया। इसमें सारे के सारे अगर जिम्मेदार मेन रूप से देखा जाए तो JSSC CGL है। JSSC CGL के आसपास इर्द गिर्द में जितना भी एग्जाम हुआ, चाहे JPSC से, चाहे
12: आपकी बात सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, सिर्फ इन दो बच्चों को बता दीजिए, ये भी किसान के बच्चे हैं, वहां पर मजदूर के बच्चे बैठे हैं, गरीब के बच्चे बैठे हैं।
13: नहीं सही नहीं, मैं इनसे,
12: ये इन्फ्लुएंसर भले से ही ना हो, ये वायरल नहीं होंगे, ये इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे, ये टिकटॉक पे नहीं होंगे।
13: मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई की हूँ, नेट क्वालिफाई की हूँ, मुझे इनका दर्द अच्छी तरह से पता है। कोई व्यक्ति जब महीनों की मेहनत से कोई तैयारी करता है, उसके बाद इस तरह से उनके साथ हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि इनका कितनी दुख है, कितना तकलीफ है। लेकिन सरकार अभी गंभीर है, इतना मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा। जो दोषी है, हम लोग चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इतनी सजा मिले कि भविष्य में किसी की हिम्मत ना हो कि वो इस तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़ कर सके। और हमारी सरकार साथ है, आप जो भी हुआ है बहुत दुखद था, बहुत दुखद है, हम लोग आपके, हमारी संवेदना आपके साथ है जी।
12: महुआ जी, ये बारिश में बैठे हैं, इनसे कोई मिलने तक नहीं आया है। मुख्यमंत्री आवास 2 किलोमीटर दूर है वहां से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, हम सब कुछ सहते हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं। जा क्यों नहीं रहे मुख्यमंत्री वहां से मिलने के लिए? बारिश में ये बच्चे बैठे हुए हैं
13: जी। बिल्कुल, आज गुरु जी की पुण्यतिथि है हमारे दिशम गुरु की, और वो गांव में है माननीय, तो मैं, हम लोग चाहते हैं कि इनकी समस्या का वो जल्द से जल्द समाधान करे, कि कभी ये नौबत ही नहीं आए कि उनको इस तरह से अपना घर छोड़कर, अपना खेत छोड़कर इस तरह से धरने पर बैठना पड़े। उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, उसे और सुरक्षित बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं। हम लोगों से सबसे वो यही बोल रहे हैं कि देखिए, आपको पता होगा कि विदेशों में ये पढ़े, इसके लिए मरंग घूम के सम्मान दिया जा रहा है, गुरु जी क्रेडिट कार्ड योजना मैंने बताया, सावित्री बाई फुले, और हर तरह से इनको सुविधा देने के लिए वो बिल्कुल, और आपको पता पता होगा कि पिछले भाजपा के कार्यकाल में सेशन कितना लेट था और कितनी तरह के पेपर लीक और हर तरह की घटनाएं उस समय हुई थी। अंकित, धीरे धीरे जो घुन लगा हुआ था उस सिस्टम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसको सुधार रहे हैं और काफी हद तक सफलता मिली है।
16: आप ही अपने मन की बात बताइए अंकित और राजेश,
13: जो अभी वो क्लियर कर रहे हैं कि आने
14: मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, माननीय जो मैम बोले कि हम ये योजना लाए, गुरुजी क्रेडिट योजना लाए, उनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए, हम उस एजेंसी को एग्जाम लेने का दायित्व दिए जो माननीय आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था, उसे हम एग्जाम लेने का प्रभार दिए। इसके अलावे मैम को ये भी बोलना चाहिए था कि हम एक ऐसे आदमी को एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर बना दिए जो रांची में होटल में लीज लेता है, होटल को लीज लेता है और वहां पर बच्चों का भविष्य के साथ खेलता है, पेपर पढ़वाता है और पैसा के आधार पर नौकरी बेचता है। ये भी माननीय जी को बोलना चाहिए। और मैम अभी महुआ मांझी मैम सरकार का संवेदना बच्चों के साथ मैम बताइए आपका संवेदना मैम आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का अगर संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता, हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम बीजेपी से हैं, हम कोई पार्टी वाला
13: छात्र है नहीं, आप
14: हमें जरा सा भी पार्टी का चीज
13: आप लोग
14: मैम सुनिए मेरा बात सुनिए मैम
13: आप लोग छात्र
14: मैम आप अगर बात सुन रहे तो मेरे बात सुनिए मैम, जिस समय हम लोगों को लगा ना कि हम लोगों को पार्टी जरा सा भी लगा कि कोई पार्टी का मंच बन रहा है, हम लोगों ने अपना मंच अलग कर लिया मैम, पता नहीं आपको क्या, आपको नहीं पता कि जेल कम मंच से हम लोग अलग हो गए?
13: बिल्कुल पता है
14: मैम, आप हम लोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं
13: जी, बिल्कुल अलग
14: कोई काम ढंग का नहीं हो रहा है,
13: आप लोग छात्र हैं, आपके
14: मुझे मुझे, हमें मुझे मैम राजनीतिक रूप से मुझे बात करना नहीं आता,
13: आप निश्चिंत रहिए, आपको आश्वासन देते हैं हम लोग भविष्य में,
14: आश्वासन क्या करेंगे मैम, कितना आश्वासन ले आज से आश्वासन मैम, आपने जैसे सिंचन को बर्बाद कर दिया, हम लोग लाइफ को बर्बाद कर दिया,
13: इस बार हम भी आश्वासन दे सकते हैं
14: मैम, मैम हम आपका आश्वासन क्या करें बताइए,
13: देखिए कुछ लोगों की गलती के कारण आपका भविष्य
14: पार्सल वापस आ जाएगा, आज जेपीएससी में भी वही हाल हो गया, क्या आपके आश्वासन से हमारा भविष्य वापस आ जाएगा उस समय? मैम काम कीजिए, मैं सिंपल से बात करता हूँ, आप लोग राजनीति जो करना कीजिए, हम लोग छात्रों को कोई मतलब नहीं है, परीक्षा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, विभाग होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट एजेंसी से एग्जाम लीजिए, ऐसा नहीं कि चोर चुहाड़ एजेंसी से आप एग्जाम ले लेते हैं, भविष्य खाता है।
13: इस बार हम लोग गारंटी देते हैं, हम लोग गारंटी देते हैं,
16: बार बार गारंटी मिली है इनको एंड अगेन एंड अगेन एंड एटलीस्ट नाउ दीज चिल्ड्रन हैव फोर्स्ड पीपल टू सिट अप एंड लिसन अश्विनी मिश्रा, बिकॉज सो फार एंड आई वांट टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन फॉर द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग राइट नाउ, यू गॉट टू यंग मैन राजेश एंड अंकित हु आर सिटिंग अंडर एन ओपन स्काई, क्या ये सच है अंकित कि आपका जो वहां पर जो टेंट लगाया हुआ था उसको भी हटा दिया गया, क्या बिजली पानी खाना कुछ मिला है क्या वहां पे?
14: मैम पहले हटाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन हम लोग बारिश में उस दिन भीग रहे थे बहुत ज्यादा मैम, सारे लोग हम लोग गुस्सा गए थे, टेंट वाला को मंगवाए थे मैम तो पुलिस बार बार अलाउ नहीं कर रही थी, हम लोग लड़ झगड़ के टेंट लगवाए मैम, तो अभी कोई उपाय से रहने लायक का मंच बन पाया मैम, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट है मैम, चूंकि हजारों की संख्या में भीड़ है मैम, तो लगभग 1500-2000 बच्चे ही अंदर रह पाते मैम, तो हम लोग बाहर ही रह जाते हैं मैम कि बाहर से बहुत दूर दूर से छात्र आए, हम लोग तो यहाँ तो शुरू से हैं, हम लोग भीगना मंजूर है मैम, बस हमारा मांग मान लिया जाए।
16: यू नो अश्विनी मिश्रा, व्हेन दीस पीपल वर गेटिंग वेट अंडर एन ओपन स्काई, NSUI वाज डूइंग अ रेन डांस इन पटना व्हेन अ वाटर कैनन वाज यूज्ड ऑन देम, टुडे पटना इज बेयरली 6 आवर्स ड्राइव फ्रॉम रांची, अगर आपकी NSUI पटना में मार्च कर सकती है, दिल्ली में मार्च कर सकती है, मुंबई में मार्च कर सकती है, भोपाल में मार्च कर सकती है, तो रांची में मार्च क्यों नहीं कर सकती सर? वहां पे तो आपको NSUI की जरूरत नहीं है, वहां तो कांग्रेस की सरकार है JMM के साथ, आप वहां पटना में रेन डांस कर रहे हैं वाटर कैनन के सामने, यहां पे बच्चे ना वहां बच्चे भीग रहे हैं बिकॉज यू कांट इवन अलाउ देम टू पुट अप अ टेंट, इफ यू कांट डू एनीथिंग एटलीस्ट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग।
17: Padmaja ji, I think you answered the question yourself that why NSUI are not marching in Jharkhand, because there is our government and we are taking the matter seriously, and like Bharatiya Janata Party who did not listen to the voices of student, protest is a democratic right of everyone and students are citizen first and they have a very right to protest, and I think Rahul Gandhi has become the voice of youth, he has awakened the youth to rise every issue in the country, and it doesn't matter whether the state belongs to Congress or BJP, it is student who's raising the concern and those concerns should be addressed. I totally second that. The larger point here is we need to understand, Padmaja ji, also understand that how BJP has treated the students. How did they lathi charge the students? How did they treated the students? They used pellet guns. They used whatnot. And now Modi ji is forgiving the student. Who should be getting the forgiveness? It should be the Modi ji who should be saying sorry.
16: Mr. Mishra, right now the people who are on the streets, right now, is there any student on the streets in Patna? No. Is there any student on the streets in Delhi? No. Is there any student on the streets in Bhopal? No. Where are the students on the streets? Is there any student on the street in Prayagraj? Why is your Chhatro ki goonj headed to Prayagraj on the 8th? Why aren't they headed to Ranchi? You go to Ranchi, you hear the Chhatro ki goonj in Ranchi on tomorrow.
17: Padmaja ji, in my starting statement itself, that I said that there's a responsible government in Jharkhand and they are taking the necessary steps so that student protest is not required. Having said that, we are seeking the accountability from the every government where students are protesting. And I was trying to raise one more concern here, which allow me to raise that media is also being very selective. When students were protesting in Jantar Mantar, media was busy trying to find out a foreign angle, foreign funding angle. When they are protesting at Jharkhand, I don't think media is trying to find any foreign
16: angle. Sir, nobody is finding any foreign angle. And if you must draw that comparison, let me also remind you that these children in Ranchi are sitting there peacefully. They are not pelting stones, and I'm not saying that students were pelting stones. Those students were overtaken by criminal elements. These young men and women in Ranchi are not allowing any criminal elements on their stage or any political elements also on their stage. But let me bring in Pradeep Bhandari, because Pradeep Bhandari, if you think that you are going to capitalize on what is happening in Ranchi, listen to these two young men. Rajesh and Ankit keh rahe, hame nahi chahiye bhai koi rajneeti. Hum yahan rajneeti ke liye nahi aaye, hum nyay ke liye aaye hain. To yahan pe aapke rajneeti roti nahi sik sakti.
18: हमें यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकनी भी नहीं है पद्मजा जी, पर हम यहाँ पे न्याय की बात कर रहे हैं और हम भी ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं उनकी आवाज झारखंड के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी कब सुनेंगे? Rahul Gandhi has a time to launch a book but not call his chief minister and say that agree to the demands. They're not even asking for a resignation. They're only asking for the cancellation of the examination and CBI probe. What are they fearing for a CBI probe? Just because of some top neta of the Congress or JMM will be caught. Rahul Gandhi has a time to go to Uttar Pradesh but he does not have a time to go to Jharkhand. And is it just because they belong to the people of Bharat? They are sons and of laborers, kisan, mazdoor ke bete hain. Isliye yahan pe koi five star activist nahi aayega. Just because they do not pay 10 lakh rupees of rent in GK1, just because they do not have quote unquote Bollywood celebrities coming and celebrating and influencing and amplifying their content. That is why the Congress party will not come, or the Congress has not got funding from it with a foreign quote unquote Akash. That's why he's not going to Jharkhand. I'm appalled that Ashwini Mishra on the show has called up them as foreign agents. अरे भैया नॉर्मल छात्र वहां पे आपसे न्याय की बात कर रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर नहीं है, वो पुलिस वालों को पीट रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं है, वो छात्र है. वेयर इज गॉड डैम राहुल गांधी? वेयर इज राहुल गांधी? And on the show, you can ask questions to BJP 344 days. But today it is your accountability. क्या करोगे आप? स्कीमें गिरा रहे हो वहां पे, स्कीम गिरा रहे हो. एक दो तीन चार बच्चे वहां पे छात्र गर्मी वहां पे बारिश के अंदर वो भीगा हुआ है, किसान का बच्चा है, वो किसान का बच्चा और जीके का बच्चा नहीं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है. इन्फ्लुएंसर रील नहीं डाल सकता वो. वहां पे हिंदुओं के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, भारत के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, मोदी के खिलाफ स्लोगन नहीं दे रहा, राजनीतिकरण नहीं कर रहा, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट. आई कंप्लीटली अग्री, वी डू नॉट वांट एनीथिंग. बट व्हाट अपॉल्स मी एज एन इंडियन एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ, दैट दीज हिपोक्रिटिकल कांग्रेसीज आर नॉट एम्प्लॉइंग द मॉरल स्टैंडर्ड्स इन द स्टेट. दे आर ओनली आस्किंग फॉर कैंसिलेशन, दे आर नॉट इवन आस्किंग फॉर अ पॉलिटिकल रेजिग्नेशन एंड अ सीबीआई प्रोब. इट्स अ लिमिटेड डिमांड.
16: महुआ माजी रिस्पॉन्ड
13: जी. देखिए ऐसा है कि आज जिस तरह से पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपको पता होगा अभी एक हफ्ता पहले.
16: एक सेकंड राजेश और अंकित कुछ दिखा रहे हैं. महुआ जी बिफोर यू रिस्पॉन्ड, राजेश और अंकित कुछ बोल रहे हैं, बोलिए राजेश.
19: पानी भरा हुआ इसमें, पूरे मैदान में पानी भरा हुआ. मैम पूरे मैदान में पानी भरा हुआ है. ये थोड़ा सा ऊंचा वाला जगह जहां हम लोग बैठे हुए, एकदम जमीन पे बैठे हुए मैम, देख सकते हैं, ये पूरा देख रहे हैं मैम, देख पा रहे हैं, पूरा पानी भरा हुआ मैम, पूरा पानी भरा हुआ है. और पिछले तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है मैम, रात में तो खूब बारिश होती है मैम, अभी कुछ देर के लिए बारिश छुट्टी हुई है, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी मैम, देख सकते हैं पूरा मैदान में पानी भरा हुआ मैम, अब देख सकते हैं उस तरह से छात्र भी उधर हर जगह पे पानी भरा हुआ है मैम.
16: महुआ जी कम से कम इनके लिए एक यहाँ पर टेंट तो लगवा दीजिए.
13: ऐसा है,
16: जंतर मंतर पे सब सुविधा थी, खाना था, सब कुछ था, बहुत अच्छी बात है. फंडामेंटल राइट इज प्रोटेस्टिंग एज लॉन्ग एज इट्स पीसफुल.
13: परिस्थिति में है, मैं कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इनके साथ न्याय करेंगे?
18: कैसे न्याय करेंगी मैडम, मुख्यमंत्री को टेंट लगाने के लिए वहां पे आने की जरूरत नहीं है मैडम। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप हमारी जो अकाउंटेबिलिटी थी हमने एक्शन लिया। यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री के साथ मीडिया ने सवाल पूछा, वो हंस रहे बोल रहे करेंगे,
13: न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि भविष्य में कभी भी उनका पेपर
18: आर दे पेंटिंग स्टोन्स नो, आर दे बीटिंग अ पुलिसमैन नो, आर दे आस्किंग फॉर अ भारतीय जनता पार्टी और सम अदर पर्सन टू कम देयर नो, देन माय पॉइंट इज व्हाई आर स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस जस्ट बिकॉज इट इज टिरनी ऑफ कन्वीनियंस ऑन दिस लॉबी, जस्ट बिकॉज दे आर पीपल हु बिलोंग टू विलेजेस ऑफ द कंट्री एंड नॉट बिलोंग टू फाइव कोट एंड कोट लटन प्लेसेस वेयर दीस ऑपोजिशन पीपल कैन कम।
19: जो व्यक्ति है जितना भी एग्जाम पास किया है, हमारे छात्रों की मांग है, हम सभी की मांग है, एकदम तत्काल रद्द होना चाहिए, ये न्याय होगा। हमारी मांग है कि जो भी दोषी है उन पर निष्पक्ष जांच करके उनकी सजा होनी चाहिए, हमारा न्याय होगा। क्योंकि पेपर लीक यहाँ पर एक आज की समस्या नहीं है, जड़ जमा चुका है। इससे पहले भी हम लोग सीजीएल और जेपीएससी में कई आंदोलन करके रद्द करवाते रहे हैं एग्जाम, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया। सॉल्यूशन तब होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री स्तर के व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि आप चाहते हैं निष्पक्ष न्याय हो।
16: And it's a very simple demand that these young men and women have been raising. There should be a central investigation, a CBI investigation, and more importantly, this is not just about a paper leak. It is about allegations that jobs are being sold. Do you realize that you've got the futures of these young men and women which are at stake over here? I also want to bring in Devendranath Mehto. He's a student leader who's also parallelly been sitting on a hunger strike now. Devendra ji, hamare saath is waqt. जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रिमेंबर द स्टूडेंट सेड वी डू नॉट वॉन्ट टू हैव एनी पोलिटिकल लिंकेजेस, सो दे हैव रिमूव देयर स्टेज, दे आर सिटिंग सेपरेटली फ्रॉम देवेंद्रनाथ मेहतो। दीज पैरेलल एजिटेशंस कंप्लीटली फॉरगॉटन, कंप्लीटली अनसीन बिकॉज ऑफ द टिरनी ऑफ डिस्टेंस। देवेंद्रनाथ जी, आप क्यों अनशन पर हैं, आपकी मांग क्या है?
20: 2 अगस्त से हम जल और अन्न को त्याग दिया है, क्योंकि 21 जुलाई से जो जांच हो रही है उसे बहुत गड़बड़ी पाई गई। एल के अंत का रिजाइन भी हुआ, कारण लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सरकार के तरफ से जो कार्रवाई अभी तक होना चाहिए सब नहीं हो पाया। हम लोग का डिमांड है जेपीएससी जेएसएससी पर कंप्लीट रिफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और रांची का प्रोटेस्ट में अंतर है। वो मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस नीट का एग्जाम का पेपर लीक था। मैं 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी में कई बार पेपर लीक हो चुकी है, और कई कई एग्जाम का ओएमआर घर से भर करके जमा कर रहे हैं या पूर्णांक से भी ज़्यादा मार्क्स दे करके मेरिट लिस्ट में लाया जा रहा है। क्वालिफाइंग पेपर को भी मेरिट में ऐड करके मैंने पूरा धांधली चल रहा है, जितना हो सके पूरा व्यवस्था ही बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पूरा व्यवस्था सड़ गया, चौपट हो गया है, तो इसीलिए आज हम लोग हंगर स्ट्राइक में आ गए हैं। और आज दिसम गुरु शिवु सोरेन जी का पुण्यतिथि है, और दिसम गुरु शिवु सोरेन अलग झारखंड राज्य के लिए पूरा जीवन भर संघर्ष किया, गरीब के लिए, न्याय के लिए आंदोलन किया। अगर वो गुरुजी आज होते हम लोग के बीच तो हम लोग के साथ आंदोलन कर रहे होते। आज उनके पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और हम लोग उनके पिताजी के रास्ते पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी को आदर्श मानते हैं, अपने पिताजी के मार्ग पर चलते हैं, तो कृपया हमारे बातों को सुने, हमारे मांगों को पूरी करें। ये मेरी आवाज नहीं है, ये झारखंड के लाखों युवाओं की आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये उनकी आवाज है जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और इच्छा रखते हैं ईमानदारी से परीक्षा हो। ये आवाज में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, वही पिताओं का पसीना है, वही अभिभावक का संघर्ष है, ये लाखों लोगों की आवाज है।
16: देवेंद्र जी, आप कब तक इस अनशन पे रहेंगे? क्योंकि अभी तक कोई सरकार से अगर नहीं आया है, अगर अगला 1 हफ्ता 2 हफ्ता कोई नहीं आया, तो फिर आप कब तक रहेंगे?
20: जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, अगर नहीं आएंगे बात करने तो मैं जो चादर ओढ़ा हूँ सफेद कलर का है, ये मेरा सफेद कलर का चादर क्यों न कफन में बदल जाए, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मेरा झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इतिहास रहा है, तभी भी मैं अधूरा में नहीं छोड़ा हूँ। चाहे सीजीएल को भी हमने रद्द कराया था और लाठी हम पर बरसी थी, इस 35 एफआईआर है सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हमारा, और हम लोग जेल भी जा चुके हैं। तो अधूरा रास्ता में नहीं छोड़ूंगा, चाहे क्यों नहीं है मेरा सफ़ेद चादर कफन में बदल जाए। आज मेरा हालत बहुत बुरी है, अभी मेरा सलाइन चढ़ रहा है, आप लाइव में देख रहे हैं, लाइव में ही मेरा सलाइन अभी भी चढ़ रहा है और मेरा पूरा बदन में दर्द है, शुगर और बीपी बहुत डाउन हो चुका है। डॉक्टर बोला सलाइन नहीं लोगे तो एडमिट करेंगे, तो हम एडमिट होने से अच्छा सोचे आंदोलन स्थल पर ही सलाइन लेना अच्छा रहेगा, और हमने सलाइन पर एक्सेप्ट किया है। बाकी जल और अन्न दोनों को त्याग किया है अभी।
16: त्रिवेंद्र नाथ जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप झारखंड के सोनम वांगचुक हैं। अगर सोनम वांगचुक खुद आपको देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहेंगे, या जो जो सोनम वांगचुक के साथ एक मंच पर आए थे उनको आप क्या कहेंगे?
20: जी बिल्कुल, सोनम वांगचुक सर का प्रेरणा से हमने ये बड़ा कदम उठाए हैं, क्योंकि हमको लगा सोनम वांगचुक सर का हंगर स्ट्राइक से अगर केंद्र की सरकार घुटने टेक सकती है तो हम छात्र लोग को न्याय क्यों नहीं मिल सकता है। और सोनम सर से मेरा एक आग्रह होगा, अगर ये वीडियो हम तक पहुंच रही है तो, कि हम सोनम सर आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है, देश का केंद्र बिंदु बना है या प्रोटेस्ट, तो मेरा हालत भी बहुत नाजुक होती जा रही है। सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है, तो कृपया करके वीडियो कॉल में और हो सके तो आप हमारे बीच आइए, आप देश के छात्रों को न्याय दिलाए हैं, एक बार पूरा झारखंड के लाखों युवा आपसे न्याय दिलाने की उम्मीद कर रहे हैं, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा।
16: मैं तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, एक छोटा सा आग्रह है बस, आके बात तो सुनिए
20: आप लोग, और आप लोग पूरा चैनल के सभी टीम से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी पहल करिए और सोनू मानचंद सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए, हम पूरा आप लोग का चैनल की टीम से हम आग्रह करते हैं।
16: महुआ जी, एक मुख्यमंत्री गुरु जी की आज जी मौके पे आज ये सब बच्चे जो महतो हैं देवेंद्र नाथ जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार आकर के मिल तो सकते हैं, बात तो सुन सकते हैं।
0: देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं, ये जितने भी छात्रों की मांगे हैं, आपकी मांगे हैं, उस पर ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हर दोषी को वो सजा दिलाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है और उन पर कार्रवाई शुरू हो गई, जांच हो रही है, और इस बार वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के मूड भी नहीं है। और जो गलतियां पिछली सरकारों में हुई है, या वो जो घुन लगा हुआ था, वो सिंडिकेट जो अभी भी वो अंदर अंदर कार्य कर रहा होगा, उस सिंडिकेट को ख़त्म करके ही वो दम लेंगे। और मैंने तो केंद्र सरकार से भी ये आग्रह किया था राज्यसभा में कि जिस तरह से आज गुजरात में कहिए, उड़ीसा में कहिए, दिल्ली में कहिए, पूरे देश में कहिए या झारखंड में कहिए, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, इसके लिए केंद्र सरकार कोई कठिन कानून बनाए जो कि पूरे देश में लागू हो, और इस तरह की हरकत करने
18: के भविष्य बर्बाद करने के लिए झारखंड का युवा देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। ये किसान का बेटा वहां पे बैठा है, आपके माखों से आंसू नहीं आ रहे, वहां पे मजदूर का बेटा आपके माखों से आंसू नहीं आ रहे, यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ये सब करने का प्रयास कर रही है। आप लोग सब गरीब लोगों के बच्चे और बड़े बड़े अमीरों के बच्चे नहीं, इसलिए आपके मुंह से कान
0: नहीं। मैंने भी पीएचडी किया है
18: मैडम, आपने एमबीए कुछ नहीं किया, बच्चा न्याय मांग रहा है, वो एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की बात कर रहा है, सीबीआई प्रोब की बात कर रहा है,
0: बिल्कुल न्याय मिल रहा है, न्याय किया जा रहा है उनके साथ,
18: होगी सीबीआई प्रोब,
0: आप बात को गलत दिशा में मत छोड़िए,
18: वो भाजपा का बच्चा नहीं है, वो कोई बड़े इंसान का बच्चा नहीं है, आप लोगों के जेएमएम का बच्चा नहीं है, वो
0: हर तरह से उन पर
18: कब होगी सीबीआई प्रोब, कब होगा एग्जामिनेशन कैंसिलेशन, वो एमआरसी शीट जो है वो
0: बेटी को लगा दिया गया है,
18: खरीद कर विरोध हो रही है वो 10-10 साल से मेहनत करते हैं डीएसपी बनने के लिए कुछ बनने के लिए
13: सामने ला रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी भविष्य में
18: ऐसे एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन देम दिस इज हाउ दे ट्रीट द पीपल ऑफ द कंट्री बट दे हैव जीरो एम्पैथी दे हैव जीरो कंसर्न दे आर आस्किंग फॉर बेसिक डिमांड्स आउट देयर दे हैव इवन केप्ट द बीजेपी एंड अदर पार्टीज अवे फ्रॉम देयर प्रोटेस्ट
13: बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी
18: मैडम दे आर सन्स ऑफ फार्मर दे आर डॉटर्स ऑफ फार्मर्स एंड पुअर लेबरर्स द पीपल ऑफ झारखंड एंड द यूथ ऑफ झारखंड एंड द entire country seeking what has Rahul Gandhi silence and your complicity done
16: okay let me bring in Ankit and Rajesh back
13: har rajya mein jaake
16: okay you know what will happen is the more politicians speak there will be more of tutu meme and finger pointing अंकित और राजेश क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज जानते भी नहीं है सच बात यह है कि हमने भी जब पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि जो जंतर मंतर में डिमांड थी और जो झारखंड में डिमांड है वो बिल्कुल ही अलग है वहां पर लोग ये हैं जो कि कह रहे हैं कि नौकरियां बिक रही हैं यहाँ पेपर लीक का मसला नहीं है पहले तो लोगों को बताइए कि हुआ क्या है कि आपके 99.314% मार्क भी आते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि झारखंड में किसी को नौकरी नहीं मिलती है इतना मार्क आने के बाद
1: बिल्कुल मैम बहुत अच्छा प्रश्न और झारखंड में पेपर लीक नहीं है झारखंड में सीट बेचा जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये तो सरकार की जो जांच एजेंसी है उसके द्वारा उद्घाटन किया गया है तो यहाँ पर तो भविष्य बेचा जा रहा है मेहनत बेचा जा रहा है संघर्ष बेचा जा रहा है मैम तो माननीय मैडम से हम यही आग्रह करेंगे निवेदन करेंगे नो डाउट मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हमारी जो मांग है पहले रद्द कीजिए फिर सीबीआई जांच कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है एकदम क्लियर कट सीट बेचा जा रहा है मैम यही इसमें जानते हैं मैम टोटल 120 क्वेश्चन मैच किया था आउट ऑफ जैसे मैं समझा देता हूँ तीन पेपर होते पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर वन में इंग्लिश एंड हिंदी था क्वालिफाइंग पेपर टू लैंग्वेज पेपर था जो ओरिजिनल पेपर था और पेपर थ्री जो जीएस पेपर था उसमें 150% का एग्जाम हुआ उसमें से 120 क्वेश्चन मिले एकदम हूबहू जो रटवाया गया था वही मिला यानी 80% क्वेश्चन मिला और जानते हैं मैम सीआईडी ने क्या बोल दिया क्योंकि पहले सीआईडी की टीम ने सही जांच की थी और उन्होंने बताया कि 120 क्वेश्चन मिला आउट ऑफ 150 यानी 80% क्वेश्चन और जब जैसे सीआईडी टीम को बदला गया उन्होंने बोल दिया फ्यू क्वेश्चन मैम मैं पूछना चाहता हूँ आज यहाँ पे सांसद महोदया भी बैठी हुई है मैम आप बता दीजिए क्या 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से फ्यू क्वेश्चन होते हैं
16: जो एक्शन लिए जा रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है उनको नहीं उम्मीद है कि इससे न्याय होगा दैट्स व्हाई वी आर एट राइट न्याय जस्टिस महुआ जी
13: अगर ऐसा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कोई स्टेप लेंगे नहीं नहीं जी
18: कंट्री इज वॉचिंग हाउ द पुअर किड्स आउट देयर आर आस्किंग फॉर अ वेरी मिनिमल डिमांड विच इज नॉट इवन पॉलिटिकल पद्मजा जी इट इज अ बेसिक डिमांड फॉर जस्टिस एंड लुक एट द हिपोक्रेसी ऑफ राहुल गांधी एंड द कांग्रेस एंड द जेएमएम विच इज गवर्निंग देयर दैट लीव अपार्ट इवन सीकिंग टू द स्टूडेंट्स दे हैव नॉट इवन मेट द स्टूडेंट्स वंस नॉट इवन प्रोवाइडेड देम बेसिक फैसिलिटीज वेयर दे कैन इवन प्रोटेस्ट नाइदर हैव दे गिवन कॉग्निजेंस टू देम एंड द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हियर इज लुकिंग एट कोट अनकोट विदेशी एंगल मतलब हाउ हिपोक्रिटिक एंड हाउ मच डू यू हेट द पीपल ऑफ द कंट्री How much do you hate the poor people of this country? Just because they are not a part of your ecosystem, you will not even listen, Ashwini. Even Hitler would have died and looking at you. You are even more hypocritical than Hitler. Even Nero would be died listening and looking at you. You have crossed that limit, my dear.
16: Ashwini Mishra, by all means, you want to corner the BJP inside parliament? Please be free to do it. You want to carry out marches in BJP-ruled states? By all means, do it. Just send one representative to meet these kids in Jharkhand as well. Because you're in government. You would actually be in a position to change something. You don't have to do marches. You can... Fix it.
21: I have not heard the Chief Minister of Jharkhand. He's spoken about the issue. And coming from Pradeep Bhandari, it is the height of shame that he is taking moral ground on student
18: protest. You are in Delhi, and you are speaking about छात्र को न्याय नहीं मिलेगा तो सिस्टम मिलाओगे झारखंड में छात्र को न्याय नहीं मिल रहा है.
21: And I have question
18: you for you. Go to your gym. Rahul can go to a gym. Rahul can go to a 5-star restaurant. Rahul can launch a book. Rahul can insult sadhus. Rahul can have his ecosystem go to Jantar Mantar. You know. word cockroach there has become an abuse. The word cockroach today has become an abuse because of discriminated individuals like them.
21: Our government is not selective.
18: Are your government is not even there. God knows where is your government. Even if government exists, that only people don't know in Jharkhand.
21: How CBI
18: trying to
16: let Ashwini finish.
21: Investigate the issue.
18: Ma'am.
16: Yes, go on, Mr. Mishra, go on, finish your point.
21: Yeah, so the point is BJP should not speak about the moral values about the student when you have lathi charge.
16: Arre sir, let the BJP not speak. Answer.

0: just these children who are sitting there answer Ankit. You don't owe the BJP nothing. But you at least owe an answer to the people who have voted for you. Presumably, you are in government because these kids would have voted for you. Ankit, Ankit.
1: मैम, मैं सारे यहाँ तीनों पार्टियां बैठी हुई जो कहीं ना मेन रूप से झारखंड में है, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेपर लीक होने में क्या सबकी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ठीक हो पेपर लीक होना? क्या सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग जब भींज रहे हैं तो सब लोग साथ आए, हम लोगों को टेंट का प्रोवाइड कराए? राहुल गांधी वहां पे बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और तमाम तरह के चीजें चला रहे हैं, क्या वो झारखंड नहीं आ सकते हम बच्चों के साथ? क्या वो यहाँ पे गाइडलाइन नहीं जारी कर सकते अपने सहयोगी गवर्नमेंट को कि बच्चों का बात को सुना जाए? लेकिन कुछ नहीं हो रहा मैम। मैं बीजेपी से भी उतना ही खपा हूँ जितना कांग्रेस और जेएमएम से हूँ जी। उन्होंने भी हमें ठगने का काम किया मैम। मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो फेयर सिस्टम मांग करता हूँ। आप लोग राज कीजिए। हम मना किए क्या? हमें क्या चुनाव लड़ना है क्या मैम? हमें चुनाव होना कुछ नहीं लड़ना है। बस हम लोग का जो मांग है जेएसएससी में जितने भी गड़बड़ियां होंगी सब जांच कराया जाए। टीडीपीएल कंपनी ने जो भी एग्जाम कराई है सबको रद्द किया जाए। 14 जेपीएससी और 11 टू 13 जेपीएससी को भी बढ़िया से जांच करा के उसको भी रद्द किया जाए। एकदम स्पष्ट मांग है मैम। और जब तक हमारा मांग नहीं माना जाएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। स्पष्ट मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं उठने वाले। और 10 दिन और रुक जाइए, रोपा चल रहा है धान। धान रोपा और हम किसान के बेटे हैं, और हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं। बारिश कुछ नहीं कर पाएगी हम लोगों को, एक शब्द नहीं
2: निकलेगा।
1: सीबीआई और ईडी चक्रवर्ती जांच, पता चल जाएगा कौन कौन इन्वॉल्व है।
0: ओके, 30 सेकंड मिस्टर मिश्रा, देन प्रदीप भंडारी, आपसे भी उतने ही खपाए। अश्विनी मिश्रा पहले आप बताइए, फिर प्रदीप भंडारी।
2: पद्मजा जी, चीफ मिनिस्टर हैज गिवन द एश्योरेंस अबाउट द इंक्वायरी, बेस्ड ऑन द इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, वट एवर द रिजल्ट, वट विल बी द आउटकम, दे विल कैंसिल द एग्जाम इफ रिक्वायर्ड, इफ इट कम्स अंडर द इंक्वायरी। बट आई डोंट थिंक द सीबीआई एंड ईडी इज अ जेन्युइन डिमांड, बिकॉज सीबीआई एंड ईडी हैज बीन यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल वेंडेटा बाय द बीजेपी, एंड वी हैव सीन हाउ दे हैव जेल्ड द चीफ मिनिस्टर विदाउट एक्चुअली कन्विक्टिंग ऑन एनी केस।
0: अरे आप अब ये लड़कों को आप कह रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड नहीं है, अब आप उनको बताएंगे कि उनको क्या डिमांड रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? अंकित बताइए। एक एक करके प्लीज, लेट्स नॉट शाउट ओवर ईच अदर। एक सेकंड, कैन आई जस्ट हैव अंकित स्पीकिंग? बताइए अंकित, सीबीआई ही क्यों? सीआईडी की जांच चल ही रही है ना, क्या प्रॉब्लम है?
1: हां बताता हूं मैं मैम। सीआईडी से हम लोग पूर्वाग्रहित नहीं थे कि सीआईडी अच्छा जांच नहीं कर सकती है। सीआईडी ने अपना मुंह खुद काला किए, खुद अपना ट्रस्ट को ब्रिज किए उन्होंने। जब उन्होंने जेएसएससी सीजीएल के मामले में जांच किया तो उनके जांच को दबा दिया गया, क्योंकि सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली है, उसके अंडर आने वाली है, तो इस पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर होती है मैम, जिसकी वजह से सीआईडी अच्छे से अपना जांच तो करना चाहती है लेकिन जांच नहीं कर पाती है, और इसका सारा काला चिट्ठा दिख गया जैसे सीजीएल में मैम। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सीआईडी जांच ना करे और सीबीआई और ईडी जांच करे। और इसमें जब भी तकलीफ हो तो मैं कह रहा हूँ 5 सिटिंग जज, कितना 5 सिटिंग जज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो और झारखंड हाईकोर्ट के भी जज हो, उनके निगरानी में जांच करवाया जाए। जो भी जांच हो उसका पर डे पता चलना चाहिए हम लोगों को, अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
0: क्योंकि मैं एक मंत्री हैं, एक एमएलए हैं, उनकी बात सुन रही थी अभी दिन में, दीपिका पांडे जी शायद उनका नाम है, वो कह रही थी कि सीबीआई में भी क्या ही हो जाता है, सीबीआई अगर जो सेंट्रल एजेंसी है वो जांच करेगी तो उस पर इतना भरोसा क्यों है आपको अंकित? हो सकता है वो जांच भी खराब हो जाए
1: मैम। उसके लिए हम लोग फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ सीबीआई का डिमांड नहीं कर रहे हैं मैम, फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं, जिसमें 90 डे के अंदर हम लोग का सारा चीज उसमें क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होता हम लोग फिर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे।
3: मैडम, वी ब्रॉट अ लॉ फॉर अ फास्ट ट्रैक कोर्ट इन 3 months, द एजुकेशन मिनिस्टर टुक मॉरल अकाउंटेबिलिटी एंड रिजाइंड, every action was taken in a time brown probe, there the protesters are not even asking for a resignation, and you have the Congress spokesperson here even trying to discredit the post protesters just because it does not belong to his lobby. And I question Rahul Gandhi, who speaks about the students, why is he apathetic to the students in Jharkhand just because they are laborers, son? They belong to SC community, OBC community and poor people's community. How much do they hate the people of the country? This man Mishra, Ashwini Mishra, comes on the studios and saying BJP, Congress, ye. Not once is he saying ki Rahul Gandhi will speak up on the issue and give a call to Jharkhand Chief Minister Hemant Soren and ask for a CBI probe. Agar aapko system pe hi nahi vishwas hai, to kaho desh pe vishwas nahi hai, na Supreme Court pe vishwas, na Supreme Court monitored probe pe vishwas, kis pe vishwas hai? Sirf Congress party ke ecosystem pe vishwas hai kya? Aur ya videshi chanda nahi mila, isliye Jharkhand nahi ja rahe ho?
0: And Ashwini Mishra, I genuinely have only one question, and I think the Chhatro Ki Goonj is an excellent initiative. You want to harness the youth power, you want to have that listening post where all all the youth can come and express their issues, express their fears, their hopes and dreams. Why can't the Chhatro Ki Goonj head to Ranchi next? What is so pressing in Prayagraj? I genuinely want to understand, on the 8th of this month, what is happening in Prayagraj instead of Ranchi?
2: Are you not aware of the number of paper leaks happened in Uttar Pradesh, Padmaja ji? Are you not aware of the exam?
0: Are you not aware of the jobs being sold in Ranchi?
2: So, Padmaja ji, as my chief minister from Ranchi already spoken that they are investigating the issue. If they have a problem with one agency,
0: अरे आप जाकर के investigation तो UP में भी हो रहा है ना? पर आप लोगों की बात सुनना चाहते हैं ना? बच्चों की बात सुनने के लिए आप छात्रों की गूंज कर रहे हैं, तो सुनिए उनकी बात जाके।
1: अगर CID से ही जांच करानी है तो फाइव
2: आर चीफ मिनिस्टर
3: चीफ मिनिस्टर इज नॉट इवन मेट देम वंस। जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा वहाँ झारखंड नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का सिंहासन जो है ना विपक्ष का वो भी हिलने वाला और नीचे चले जाओगे, इतना ज्यादा घमंड आ चुका है। शर्म आनी चाहिए, देश के नागरिकों के, देश के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते हो, ये तुम्हारी सच्चाई है। जॉब नहीं मिलेगा तो सिस्टम मिलेगा, हाँ झारखंड में मिलेगा, हाँ हर जाके हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, शर्म आनी चाहिए। I'm ashamed that I'm doing this. I'm into this political bickering this I'm going to do this.
4: अभी मांगो चाहिए स्टूडेंट से, आपको
3: बच्चों से मिलो मेरे भाई, वहाँ पे वो किसान का बेटा है, वहाँ पे गरीब का बच्चा है, वहाँ पे वो आपके इकोसिस्टम का नहीं है जो इंस्टाग्राम पे आपके रील को लाइक कर दे शेयर कर दे, इसलिए नहीं जा रहे क्या? पैसा नहीं मिल रहा बाहर से इसलिए नहीं जा रहे, पैसा नहीं मिला इसलिए बाहर से, मैसेज नहीं है बाहर से जाने के लिए, कितने बड़े शर्म मेरे भाई। आप लोग इतना इस देश से नफरत करते हो जितना कोई नहीं नफरत करता है। आप 100 लोग दिल में बैठकर अपने परिवार के लोगों के आजू बाजू लोगों में रहना चाहते हो और झारखंड नहीं जाना चाहते। अश्विनी आप तो कम से कम एक, आप अश्विनी मिश्रा मुझे लगता है आप तो टीयर टू टाउन से आते हो, वहाँ असली भारत है, वो दाल चावल खा रहे हो,
4: अपनी बात करो।
3: अरे मेरी बात करी, मेरे एजुकेशन में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट हुए, अकाउंटेबिलिटी भी, सब गिरफ्तार हुए, पेपर वापस से 11 लाख 12 लाख 22 लाख बच्चों ने दिया, पेपर भी वापस से हो गया। तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। वह किसान का बच्चा सड़क पर पड़ रहा है, न्याय मांग रहा है, वो बीमार हो रहा है, पानी में भीग रहा है, शर्म आनी चाहिए।
0: When you raise issues, and I'm not saying that issues should not be raised, when you raise issues, the same finger can be pointed back at you, saying you were quiet. For the longest time, nobody in the government engaged with Sonam Wangchuk, nobody engaged with the CJP. You thought that this is something that would pass. Same thing even Hemant Soren is doing, hoping that abhi investigation chali raha hai. Aapne kya bola? Ki bhai humne re-neat kara diya, humne 13 logon ko pakad liya, investigation chal raha hai. Wahi Hemant Soren bhi kar rahe hai ki humne falan logon ko pakad liya, humne CID ka probe kara liya. All of this will also blow.
3: Aap Sonam Wangchuk se samajh lijiye, pooch lijiye wo kya chahte hai. Aaj Sonam Wangchuk ki raaye kya hai? Ye to Sonam Wangchuk tak to nahi chhod rahe. हमने चलिए बाद में प्रोटेस्ट एंगेज किया, हमने किया तो सही, हमने एक्शन तो लिया, अब तो ये सोनम वांगचुक तक को नहीं छोड़ रहे और इनके कोट अनकोट कॉकरोचेस तो इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि इट इज बिकम अब्यूज बिकॉज दैट कॉकरोच एवरीबॉडी हैज गॉट अ टाइफाइड एंड नॉट अ सिंगल पर्सन इज गोइंग देयर जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम फार्मर्स सर, उनको पैसा वहां से नहीं आया।
0: Okay.
3: How much hypocritical can we be in this country?
0: I want to again bring it back to Rajesh and Ankit. Rajesh, मुझे ये बताइए कि अभी अगर आपको जो लोग, और आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे थे हजारों लाखों मिलियन 150 मिलियन व्यूज जा रहे हैं एक एक रील के, जिन लोगों ने वो बनाया, जिन लोगों ने वो देखा, अगर इस वक्त वो आपको देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहेंगे रांची में बैठ के?
5: बिल्कुल मैडम, सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं जो लोग हमारे इस मुहिम को नेशनलाइज किए। आप तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि झारखंड में शायद ही कभी इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के नेशनल मीडिया कवर करती थी, पहली दफा है छात्रों की आवाज नेशनल मीडिया बनी। मैं सभी से कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से कहना चाहूंगा कि यदि हम लोग देश को, भारत का सपना जो है हमारा वो पूरा करना है तो हम लोगों को यहाँ लड़ना छोड़ना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। मैडम बोल रही थी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं माननीय से भी पूछना चाहूंगा, अभय तिवारी जो है मैडम वो JSSC CGL का मास्टर माइंड है, पूरा जांच हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन मास्टरमाइंड को CID नहीं गिरफ्तार कर।
0: They do not trust your probe, ma'am. यू नो आइदर यू कैन कीप सेइंग द सेम प्लैटिट्यूड्स ओवर एंड ओवर, जांच चल रही है, न्याय होगा, हम सुन रहे हैं, न्याय होगा. वहां बच्चे बैठ के कह रहे हैं हमें नहीं भरोसा है इस जांच के ऊपर, हमें नहीं भरोसा है कि न्याय होगा. Why such an aversion to a CBI probe?
6: देखिए ये सचमुच वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में और दूसरे राज्यों में होती रही हैं, इसलिए वो किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. मैं उनका दर्द समझती हूँ. देखिए एक हफ्ता पहले गुजरात में भी यही पेपर लीक हुआ, वहाँ पे तो हमारी सरकार नहीं थी. अभी उड़ीसा में हुआ, वहाँ भी हमारी सरकार नहीं थी. दिल्ली में हुआ. तो ये जो है ना, यहाँ पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है. हम लोग को सब लोग मिलकर, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सबको मिलके अब ये करना है कि हमें कैसे छात्रों के साथ हम न्याय, छात्रों को न्याय दिलाए, ये सबसे ज़रूरी है. और हम लोग इसमें बिल्कुल तटस्थ हैं. कोई तरह का पॉलिटिक्स हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही चाह रहे. दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं. वो चाह रहे हैं कि उनको रिजल्ट दें, वो चाह रहे हैं कि उनको आश्वासन देकर सिर्फ नहीं आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बीमारी, ये कीड़ा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए.
0: आई विल अगेन रिपीट माई क्वेश्चन. जिन जिन बच्चों से मैंने बात की है ओवर द लास्ट थ्री डेज, दे हैव सेड ओनली वन थिंग, वी डू नॉट ट्रस्ट द सीआईडी इंक्वायरी. We think a CBI investigation would be more trustworthy.
6: CID जांच में पूरा नजर है कि किसी के.
0: मैम CBI इंक्वायरी से इतनी एलर्जी क्यों है? क्या आपको लगता है कि CBI इंक्वायरी में आपके साथ न्याय नहीं होगा? क्या वो बायस्ड होगी? Why are you so averse to a CBI inquiry?
6: नहीं, हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है.
0: तो आप मान कर लीजिए ना,
6: तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. लेकिन ये प्रक्रिया होती है कि जब सीआईडी जांच कर रही है तो उसके बाद ही सीबीआई जांच हो सकती है. तो जरूर ये प्रक्रिया भी कर दी जाएगी. अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से होगा.
0: ओके, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स.
3: लॉ टेल्स यू दैट अ सीबीआई प्रोब कैन बी ऑर्डर्ड इवन व्हेन अ सीआईडी प्रोब इज ऑर्डर्ड इफ द गवर्नमेंट आस्क्स द सेंटर टू डू सो, एंड इफ नॉट इन द गवर्नमेंट द कोर्ट्स कैन ऑल्सो ऑर्डर. आई विल कम टू द फंडामेंटल पॉइंट. पद्मजा जी, दे आर नॉट बीजेपी वोटर्स आउट देयर, दे आर स्टूडेंट्स एंड यूथ एंड फ्यूचर of Jharkhand. They are selling the future of Jharkhand. आप future of Jharkhand को गिरवी रख रहे हो अपनी राजनीति के लिए. हमको तो जो moral accountability लेनी थी, हम तो law तक ले आए. What have you done? Nothing. Seed बेची जा रही है. League तो छोड़िए, seed बेची जा रही है. जिसके 40 नंबर आ रहे हैं उसको आप दे रहे हो, पैसा दे के चल रहा है. इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता. और राहुल गांधी शांत कर बोले राजनीति मत करो. राजनीति नहीं करे, छात्र की बात कर रहे हैं यहां पे.
0: महुआ जी,
6: देखिए ऐसा है ना कि सीट बेची जा रही है, नहीं बेची जा रही है. अगर पूरे देश में भ्रष्टाचार है तो ये बहुत गलत है. हम लोग इसका विरोध करते हैं.
3: मैडम आपके झारखंड की बात हो रही है, देश की बात आपने 30 दिन पहले कर ली. कानून दिया
6: और कार्रवाई कर सकते हैं ना. देखिए ये आज आप यहाँ पर, इसके पहले 17-18 साल तक भाजपा की सरकार थी. आप इतिहास उठा के देखिए, ये घुन लगा हुआ है. मैं मानती हूँ जिसे ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी साफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटा रहे हैं, ऐसे लोगों से निपट रहे हैं. और आने वाले दिन में
0: लेगेसी प्रॉब्लम
6: इसके लिए पूरी
3: हमारी 5 साल की सरकार के पहले इनकी 5 साल की सरकार थी. तो क्या ये कह रही है जब हेमंत सोरेन पहले सरकार में थे वो भ्रष्ट थे? Is she admitting that the earlier government run by Hemant Soren was a corrupt government?
6: वो नहीं थे, वो समय सरकार में नहीं थे.
3: That it was a corrupt government. Past is past. Please talk about present now. Please talk about what you will do for the future now. We got a law from the parliament which was our responsibility. What have you done?
6: Hemant Soren ji is doing
3: nothing, zero. Are you in the parliament? Did you meet Rahul Gandhi and ask him to speak to Hemant Soren? She is a member of parliament, right? Can you please tell me how many meetings have the member of parliament of JMM and Congress done with Rahul Gandhi on this? Has he taken out a minute to also for the people of Jharkhand and the youth of Jharkhand?
6: Every day.
3: Where, which day?
0: One at a time, please. Can you please have Mahua Maji only speaking? Yes.
6: हर दिन उनके ऑफिस में मीटिंग होती है और वहाँ पर माननीय खड़गे जी के ऑफिस में, और उसमें सब तमाम इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है. और ये चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी होती है हम लोगों की, और वो लगातार इस पर आश्वासन दे रहे हैं. वो बहुत दुखी हैं और वो
3: इसको लेकर आपका नेता खेल सकता है, आपका नेता इंस्टाग्राम रील डाल सकता है, आपका नेता ये सब इंस्टाग्राम जेंसी एक्शन कर सकता है, वो जेंसी बच्चे के न्याय की नहीं बात कर सकता.
0: ठीक है अंकित, आखिरी में आप ही को बोलना चाहिए क्योंकि आप ही की आवाज पूरे देश को सुननी चाहिए. अंकित
1: मैम, स्पष्ट रूप से सांसद महोदय जी, मैं जानता हूँ कि जेएमएम के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के भी जो भी पैनल से बैठे हुए, चाहे बीजेपी के बैठे हुए हैं. मैं सबसे कम्युनिटी सबको एक साथ में पहले कहना चाहता हूँ कि सर जहां का भी मामला हो मुझे नहीं पता है ना, ठीक है झारखंड का मामला इन भी स्टेट और कंट्री का बात कर रहे हैं, पूरा ऑल कंट्री का, अब ठीक है एक रोल लू लाया, एक लो लाइए, बढ़िया से काम कीजिए ताकि ये फ्यूचर हम लोगों

बर्बाद ना हो, पूरा देश का फ्यूचर बर्बाद ना हो। अब मैं आता हूँ झारखंड डिस्ट्रिक्ट से। मैम महुआ मांझी मैम, आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा मैम, मैं जानता हूँ कि आपका आपका बात जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी